सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आश्विन माह की तिथि 22, तदनुसार 14 अक्टूबर ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठे चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In Bihar, 13 people died when a boat capsized in the Raghupur Diyara area of Vaishali district last night. Vaishali district magistrate Varsha Singh told media persons that 13 people died while 6 were rescued after the boat capsized in the Ganga River in Raghupur. Most of the deceased are minors who were travelling on the boat to attend a feast. Around 15 to 20 people were on board the boat. 7 others have been referred to another hospital for better treatment. Prime Minister Narendra Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased and 50,000 rupees to each injured. Chief Minister Samrat Chaudhary condoled the loss of the life in the incident and announced an ex gratia of 4 lakh rupees to the kin of each deceased. Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a 2-day visit to India last evening. During her visit, she will meet

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नर नारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि दैव अनुकूल हों, तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे वाणी जयराम और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

कहते हैं जब मन थोड़ा थक जाता है तो ईश्वर का स्मरण उसे एक नई शांति देता है। भक्ति के कुछ क्षण हमें अपने व्यस्त जीवन से दूर अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं। इन्हीं शांत और सुंदर पलों को आपके साथ बांटने के लिए हम एक बार उपस्थित हैं आपके अपने कार्यक्रम समर्पण में। तो आइए शुरू करते हैं एक सुंदर भजन से,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों के स्वरों में ये सुंदर भजन। श्रोताओं, आपको बता दूं कि आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज हम सब मिलकर ध्यान लगा रहे हैं माँ कुशमांडा के चरणों में। माँ आपकी ज़िंदगी में खुशियों की ऐसी ही धुन बिखेरती रहे। और भाई, सुनते हैं अगला भक्तिमय गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्तिमय गीत। अगला भक्तिमय गीत आइए सुनते हैं लखबीर सिंह लखा और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे कुमार आनंद के स्वर में गीतों का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से सवेरे 8:30 पर। श्रोता, हमारे केंद्र से लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आप आनंद ले सकेंगे राधा बंदोपाध्याय के स्वर में बांग्ला लोकगीतों का। सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। सवेरे 10 सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, दिन के 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। यहीं से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:10 पर, आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम दोपहर 1:20 पर, प्रादेशिक समाचार दिन के 2:55 पर, आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम दिन के 3:00। श्रोताओं, यहीं से आप सुनेंगे मुख्य समाचार शाम 4:00। शाम 4:02 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 5:00 सुनिएगा मुख्य समाचार। श्रोताओं, हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायिका द्वारा गाए गए फिल्मी गाने। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इसमें चर्चा का विषय होगा हरी साग सब्जियों की खेती। मनोरंजन कीजिएगा कुरमाली लोकगीत से संतोष महतो और साथियों के स्वरों में। इस कार्यक्रम में आप भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त करेंगे और आपका मनोरंजन करवाएंगे सुभाष चंद्र होनहागा और साथियों के स्वरों में हो लोकगीत से। शाम 6:00 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, शाम 6:02 पर सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा, इसमें जानकारी के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा विषय पर। मनोरंजन कीजिएगा जोमनामा लोकगीत से सुखमती बिरुली और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 6:30 पर सुनिएगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। श्रोताओं, शाम 7:15 पर सुनिएगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 8:00 सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:00। उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 से। श्रोता, हमारे केंद्र से रात्रि 10:00 सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं कुमार आनंद के स्वर में गीतों का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये गीत। श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं कुमार आनंद के स्वर में गीतों का। और भाई सुनते हैं रमानाथ अवस्थी द्वारा रचित ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे कुमार आनंद के स्वर में गीतों का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

नमस्कार जोहार श्रोताओं, जोहार चायवासा कार्यक्रम लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त उदय पान। श्रोताओं, सबसे पहले आप सबों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सुहाग।

श्रोताओं, जोहार चायबासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था सुहाग। श्रोताओं, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा आप सबों के मनोकामनाएं पूर्ण करें। और बढ़ते अगले गीत की ओर। गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। श्रोताओं, फिल्मी गीतों की एक ख़ास बात होती है, कभी कोई गीत हमें पुराने दिनों की याद दिलाता है, कभी किसी अपने की, और कभी बिना किसी खास वजह के ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है विश्वास।

श्रोताओं, ये था फिल्म विश्वास का गीत मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत येसुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सुनैना।

येसुदास की आवाज़ में श्रोताओं, ये था फिल्म सुनैना का गीत। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म नूरजहां से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नूर जहां का ये प्यारा सा गीत। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब श्रोताओं, बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पड़ोसन का ये गीत।

अब आइए सुनते हैं अगला गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

0: श्रोताओं, फिल्म किस्मत का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में दिल से मिले दिल फिल्म का ये गीत।

दिल से मिले दिल, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं ये सुनते हैं अगला गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है श्री 420।

श्रोताओं, आज नवरात्रि के इस पावन दिन पर जहां हम माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना कर रहे हैं, वहीं आज दिल से सलाम है देश के प्रत्येक सैनिक को। जी हाँ श्रोताओं, जब हम त्योहारों की खुशियों में डूबे होते हैं, तब शून्य से नीचे के तापमान में, सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर और थार के तपते रेगिस्तान में हमारी सेना का हर एक जवान मुस्तैदी से खड़ा होता है। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ देश की सुरक्षा का संकल्प होता है। भारतीय सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि हमें ये सिखाती है कि सेवा परमो धर्मा क्या होता है। उनके हौसले के आगे हिमालय भी छोटा पड़ जाता है और उनकी जांबाजी के आगे हर दुश्मन घुटने टेक देता है। हमें गर्व है अपनी इस सेना पर, हमें नाज है अपने इन शेरों पर। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म लीडर का ये गीत।

श्रोताओं वाकई काफ़ी सुंदर गीत था और श्रोताओं आंखें नम और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है इसे सुनकर। श्रोताओं इसी देशभक्ति के जज्बे के साथ अब वक्त हो चला है आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली

0: के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
5: दांत खांच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
5: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
4: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
6: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
4: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों, पूछना क्यों।
9: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
10: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार, त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, यूपीआई पर शुल्क दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। एसआईआर के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, एआई से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट जेईई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
1: एफएसएल की टीम हती शाखा और अन्य जो टीम के मेंबर हैं, एक व्यक्ति से पूछताछ किया गया। मैंने अपना जुर्म स्वीकार किया और पूरे घटनाक्रम को बताया और उसके खिलाफ में पर्याप्त साक्ष्य भी हम लोग के पास। मृतिका के गांव के बगल गांव का ही रहने वाला है, तो इसको भय हुआ कि हम पकड़े जाएंगे, इसी में लतावत से उसकी मृत्यु हो गई।
0: रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने लगभग 50 मोबाइल फोन और 7 से 8 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के दम पर रंगदारी वसूलने के कथित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा गोलियां बरामद की हैं। सिटी एसपी ललित मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं।
2: छापेमारी की गई तो 5 लोग थे, जैसा कि सूचना थी, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं या फिर कुछ उनके पास आर्म्स है, उसका यूज कर सकते हैं और आगे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पूछताछ हुई आगे तो कुछ लोग हैं जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास है। बरामदगी भी हुई है सामान की, जिसमें 1 लोडेड देसी कट्टा, बाकी 4 लोग उनके पास से गोलियां मिली है।
0: रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा, बिजली, सफाई, सड़क और विसर्जन व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने 5 बड़े निर्देश दिए। बिना फायर और स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट के किसी भी पंडाल को अनुमति नहीं मिलेगी। बड़े पंडालों में 24 घंटे बिजली कर्मी तैनात रहेंगे और हर पंडाल में नशा मुक्ति के फ्लेक्स लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और विसर्जन घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती के साथ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने का आदेश दिया गया। रांची में आज से कई पंडालों के पट खुलेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने यातायात बदलाव की जानकारी दी।
3: दुर्गा पूजा पंडाल है वो 14 तारीख से खुल रहे हैं। सुजाता चौक से रेडियम चौक तक गाड़ियों के आवागमन के लिए बंद कर दिया जाएगा। पुरानी अरगोड़ा चौक के आगे उसको बंद कर दिया जाएगा, पुंदाक की तरफ जो जाता है। नागा बाबा खटाल एरिया है दुर्गा पूजा में, उसे पार्किंग स्पेस बनाया गया है। भारी मात्रा में श्रद्धालु सड़क पे रहेंगे और वहाँ पे जाम रहने की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। हमारी पूरी पुलिस सतर्क रहेगी, पर फिर भी आप लोग सतर्कता।
0: दुर्गा पूजा में ट्रेनों की भीड़ और वेटिंग के बीच रेलवे टाटानगर से 11 पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनसे बक्सर, पटना, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, अजमेर, कोटा, रायपुर, नागपुर, हावड़ा और संबलपुर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। कुछ ट्रेनें 1-2 फेरे जबकि कुछ दिसंबर तक चलेंगी। सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी के अनुसार यात्रियों की जरूरत और वेटिंग की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया। अब अखबारों की सुर्खियां। 15 से नहीं लागू होगा यूपीआई भुगतान पर शुल्क, दीपावली तक के लिए टला। इस खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, यूपीआई पेमेंट पर 0.4% शुल्क का फैसला दीपावली तक टला। दैनिक जागरण ने लिखा है, ट्रिपल आईटी रांची में छात्र की मौत की जांच के लिए केंद्र ने गठित की कमेटी। बिहार के राघोपुर में पलटी नाव, 13 लोगों की गई जान। हिंदुस्तान और प्रभात खबर ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। गुमला में 2018 से लापता बच्ची के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सरकार के शपथ पत्र पर जताई कड़ी नाराजगी और मांगा जवाब। झारखंड में टीबी से मुक्ति के लिए चलेगा विशेष स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान। लोगों को बीमारी के लक्षणों, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक करने पर जोर। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में छापेमारी में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 50 मोबाइल फोन और करीब 8 लाख रुपए नकद जब्त। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर रांची उपायुक्त ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के पंडालों को नहीं मिलेगी अनुमति, यातायात व्यवस्था में भी बदलाव। और टाटानगर से 11 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों को मिलेगी राहत। कुछ ट्रेनों के 1-2 फेरे जबकि कुछ दिसंबर तक चलेंगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं। बांग्ला लोकगीतों का कलाकार हैं राधा बंदोपाध्याय।

श्रोताओं, आज के लोकगीतों के कार्यक्रम माटी के महक में आप आनंद ले रहे हैं। बांग्ला लोकगीतों का कलाकार हैं राधा बंधोपाध्याय।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोता, उन लोकगीतों के कार्यक्रम माटी के महक में आप आनंद ले रहे हैं। बांग्ला लोकगीतों का कलाकार है राधा बंदोपाध्याय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे बांग्ला लोक गीतों का कलाकार थे राधा बंदोपाध्याय। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

0: विविध कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार और साथ ही आप सभों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और समय निकालकर आप हमारे कार्यक्रम भी लगातार सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं विश्व मानक दिवस के बारे में। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर के दिन को दुनिया भर में विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। पहली बार इसे 1970 में मनाया गया था। आम बोलचाल में मानक का मतलब होता है एक तय नियम, पैमाना या कसौटी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की चीज़ें सुरक्षित और सही तरीके से काम करें इसके लिए कुछ नियम कितने ज़रूरी हैं। श्रोताओं, अब सवाल उठता है आखिर ये मानक क्या है। श्रोताओं, इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप बाज़ार से कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो आप उसे घर पर मौजूद किसी भी चार्जर या बिजली के बोर्ड में प्लग कर देते हैं और वो चार्ज होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली के प्लग, सॉकेट और चार्जर बनाने वाली कंपनियों ने एक मानक यानी नियम का पालन किया है। श्रोताओं, अगर ये नियम ना हो तो हर कंपनी अलग तरह का प्लग बनाएगी और आपको हर स्विच बोर्ड के लिए अलग चार्जर ढूंढना पड़ेगा। श्रोताओं, हेलमेट पर लिखा ISI मार्क या सोने के गहनों पर हॉल मार्क भी मानक के ही उदाहरण हैं, जो हमें बताते हैं कि सामान असली और सुरक्षित है। श्रोताओं, हम विश्व मानक दिवस मनाते हैं और इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला है गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए। श्रोताओं, ये दिवस हमें बताता है कि मानकों की वजह से ही हमें सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलता है। बिना मानकों के नकली और ख़तरनाक सामानों की बाढ़ सी आ जाएगी। श्रोताओं, जब पूरी दुनिया में चीज़ों को बनाने का एक ही नियम होता है तो भारत में बना सामान अमेरिका या यूरोप में भी आसानी से बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है, दुनिया भर के हज़ारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर मिलकर इन नियमों को तय करते हैं। ये दिन उनके इसी योगदान को धन्यवाद करने का दिन है। श्रोताओं, वैश्विक स्तर पर तीन बड़ी संस्थाएं ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, IEC और ITU मिलकर ये नियम बनाती हैं। वहीं भारत में BIS यानी भारत मानक ब्यूरो ये जिम्मेदारी संभालता है। श्रोताओं, विश्व मानक दिवस केवल एक तारीख नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन को सुरक्षित, आसान और व्यवस्थित बनाने वाले अदृश्य नियमों का उत्सव है। चाहे वो हमारी गाड़ी की सुरक्षा हो, खाने पीने की चीज़ें हो या इंटरनेट की स्पीड, मानक हर जगह हमें एक बेहतर और भरोसेमंद जिंदगी देने का काम करते हैं। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल, थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

தான் சுயம் இனி கட்டுப்பாடு. பாரதிய சேனா. श्रोताओं, इस ज़रूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, इन दिनों विश्व डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होती है विश्व डाक दिवस से। श्रोताओं, डाक सेवाओं की उपयोगिता और इसकी संभावनाओं को देखते हुए ही हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। श्रोताओं, सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन सहज रूप से हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसी वजह से बाद में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। श्रोताओं, यह संधि 1 जुलाई 1875 को अस्तित्व में आई। 1 अप्रैल 1879 को जनरल पोस्टल यूनियन का नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि सार्वभौमिक डाक संघ या UPU कर दिया गया। श्रोताओं, UPU की स्थापना वैश्विक संचार क्रांति की शुरुआत थी। डाकघर ने दुनिया के एक जगह के लोगों को दूसरे जगह रहने वाले लोगों से संप्रेषण का माध्यम उपलब्ध कराया। वर्ष 1969 में जापान के टोक्यो में 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस घोषित किया गया। तब दुनिया भर में डाक सेवाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष इस दिन विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, यह दिन अंतर्राष्ट्रीय पत्रों के पूरे विश्व में मुक्त प्रवाह के लिए मार्ग प्रशस्त करने का एक प्रयास है। श्रोताओं, 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। सदस्यता लेने वाला भारत प्रथम एशियाई देश था। भारत में डाक सेवाओं का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। डाकघरों में बुनियादी डाक सेवाओं के अतिरिक्त बैंकिंग, वित्तीय व बीमा सेवाएं भी उपलब्ध हैं। एक तरफ जहां डाक विभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत सब्सिडी आधारित विभिन्न डाक सेवाएँ देता है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी, जनजातीय व दूरस्थ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में भी उसी दर पर डाक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। श्रोताओं, भारतीय डाक विभाग के अनुसार 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने का उद्देश्य आमजन को भारतीय डाक विभाग के योगदान से अवगत कराना है। सप्ताह के हर दिन अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। 10 अक्टूबर को सेविंग बैंक दिवस, 11 अक्टूबर को मेल दिवस, 12 अक्टूबर को डाक टिकट संग्रह दिवस, 13 अक्टूबर को व्यापार दिवस तथा 14 अक्टूबर को बीमा दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, सेविंग दिवस पर ग्राहकों को डाक बचत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। ग्राहकों को बताया जाता है कि कौन सी बचत योजना लाभदायक है। डाक सप्ताह दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पादों के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। श्रोताओं, डाक दिवस पर बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं बीमा के बारे में। श्रोताओं, हम सब अपने परिवार को खुश और सुरक्षित देखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है, जैसे अचानक तबीयत खराब होना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या घर में कोई अनहोनी हो जाना। इन मुसीबतों को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनसे होने वाले पैसों के नुकसान से खुद को ज़रूर बचा सकते हैं। इसी बचाव के तरीके को बीमा कहते हैं। श्रोताओं, बीमा कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है स्वास्थ्य बीमा।
आज के समय में अस्पताल का खर्च बहुत महंगा हो गया है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो ये बीमा अस्पताल का सारा खर्चा जो है खुद उठाता है। इससे आपकी गाढ़ी कमाई और बचत सुरक्षित रहती है। अगला है जीवन बीमा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। श्रोताओं, ये परिवार के कमाने वाले मुखिया के लिए सबसे ज़रूरी है। भगवान ना करे अगर जो है घर के मुखिया को कुछ हो जाए तो बीमा कंपनी श्रोताओं उसके परिवार को एक बड़ी रकम देती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा बिना किसी रुकावट के चल सके। अगला है गाड़ी का बीमा। अगर आपकी बाइक या कार का जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या वो चोरी हो जाती है, तो उसे ठीक कराने या नया खरीदने का खर्चा बीमा कंपनी देती है। भारत में गाड़ी का बीमा कराना कानूनी रूप से भी ज़रूरी है। श्रोता, बीमा कराने के कई फायदे हैं, जैसे चिंता मुक्त जीवन। जब आपको पता होता है कि मुसीबत आने पर बीमा कंपनी आपके साथ खड़ी है, तो आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं। अगला है कर्ज से बचाव। अचानक कोई बड़ी बीमारी आने पर लोगों को ज़मीन बेचनी पड़ती है या ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। बीमा आपको कर्जदार होने से बचाता है। अगला है छोटी बचत बड़ा फायदा। श्रोताओं, हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देकर आप भविष्य के लाखों रुपए के जोखिम को जो है कम कर लेते हैं। श्रोताओं, बीमा कोई गैर जरूरी खर्चा नहीं है, बल्कि ये संकट के समय में एक सच्चे दोस्त की तरह काम आता है। जैसे हम धूप और बारिश से बचने के लिए छाता खरीदते हैं, वैसे ही ज़िंदगी के बुरे दिनों से बचने के लिए बीमा बहुत ज़रूरी है। अगर आम आदमी को अपने बजट के हिसाब से एक सही बीमा जो है श्रोताओं, आम आदमी को अपने बजट के हिसाब से एक सही बीमा कराना जो है ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि उसका परिवार हमेशा जो है सुरक्षित रहे। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इस देशभक्ति गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, अब आइए जानते हैं भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी कि 14 अक्टूबर को जन्म हुआ था। श्रोताओं, बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी के बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 14 अक्टूबर को सन 1884 में दिल्ली में हुआ था। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। विदेशों में भटकते हुए अनेक कष्ट सहकर लाला हरदयाल जी ने देशभक्तों को भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। श्रोताओं, लाला हरदयाल जी ने दिल्ली और लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। देशभक्ति की भावना उनके अंदर छात्र जीवन से ही भरी थी। मास्टर अमीर चंद, भाई बालमुकुंद आदि के साथ उन्होंने दिल्ली में भी युवकों के एक दल का गठन किया था। लाहौर में उनके दल में लाला लाजपत राय जैसे जो है क्रांतिकारी शामिल थे। श्रोता, एमए की परीक्षा में सम्मानपूर्ण स्थान पाने के कारण उन्हें पंजाब सरकार की छात्रवृत्ति मिली और वे अध्ययन के लिए लंदन चले गए। श्रोताओं, लंदन में लाला हरदयाल जी भाई परमानंद, श्याम कृष्ण वर्मा आदि के संपर्क में आए। उन्हें अंग्रेज सरकार की छात्रवृत्ति पर शिक्षा प्राप्त करना स्वीकार नहीं था। उन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा जी के सहयोग से पॉलिटिकल मिशनरी नाम की एक संस्था बनाई। इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करते रहे। दो वर्ष उन्होंने लंदन के सेंट जॉन्स कॉलेज में बिताए और फिर भारत वापस आ गए। श्रोताओं, लाला हरदयाल जी अपनी ससुराल पटियाला होते हुए लाहौर पहुंचे और पंजाब नामक अंग्रेजी पत्र के संपादक बन गए। उनका प्रभाव बढ़ता देखकर सरकारी हलकों में जब उनकी गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी तो लाला लाजपत राय ने आग्रह करके उन्हें विदेश भेज दिया। वे पेरिस पहुंचे। श्याम कृष्ण वर्मा और भिकाजी कामा जी वहां पहले से ही थे। लाला हरदयाल जी वहां जाकर वंदे मातरम और तलवार नामक पत्रों का संपादन उन्होंने किया। 1910 ईस्वी में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को जो है वह अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने भारत से गए मजदूरों को संगठित किया और गदर नामक पत्र निकाला। श्रोताओं, उन्होंने कई रचनाएं भी की, जैसे थॉट्स ऑन एजुकेशन, युगांतर सर्कुलर, राजद्रोही प्रतिबंधित साहित्य, गदर एलाने जंग, जंग दहाका, सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस, राइटिंग ऑफ हरदयाल, 44 मंथ्स इन जर्मनी एंड टर्की, स्वाधीन विचार, लाला हरदयाल जी के स्वाधीन विचार। श्रोताओं, गदर पार्टी की उन्होंने स्थापना की 25 जून 1913 ईस्वी में। पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना जी थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थथगढ़, लाला हरदयाल, लाला ठाकुर दास धूरी और पंडित कांशीराम मदरोली जी थे। गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम भी गदर पार्टी रखा गया था। गदर पत्र ने संसार का ध्यान भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की ओर दिलाया। इस पार्टी की कनाडा, चीन, जापान आदि में शाखाएं खोली गई। लाला हरदयाल जी इसके महासचिव थे।
श्रोताओं, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल जी ने भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। जून 1915 ईस्वी में जर्मनी से 2 जहाज़ों में भरकर बंदूकें बंगाल भेजी गईं, परंतु मुखबिरों के सूचना पर दोनों जहाज जब्त कर लिए गए। लाला हरदयाल जी ने भारत का पक्ष प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की आदि देशों की यात्राएँ भी की। श्रोताओं, जर्मनी में उन्हें कुछ समय तक नज़रबंद कर लिया गया था। वहाँ से वे स्वीडन चले गए, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष बिताए। श्रोताओं, लाला हरदयाल जी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं से सहयोग न मिलने पर शांतिवाद का प्रचार करने लगे। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए वे फिलाडेल्फिया गए थे। 1939 ईस्वी में वे भारत आने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जो है पुत्री को कभी नहीं देखा था, जो उनके भारत छोड़ने के बाद पैदा हुई थी, लेकिन ये ना हो सका वे अपनी पुत्री को एक बार भी नहीं देख सके। श्रोताओं, भारत में उनके आवास की व्यवस्था हो चुकी थी, पर देश की आज़ादी जो है उसके बाद भी जो है श्रोताओं माफ़ कीजिएगा, देश की आज़ादी का ये जो क्रांतिकारी जो थे, 4 मार्च 1940 ईस्वी को जो है उनका निधन हो गया। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे लाला हरदयाल जी के बारे में, और श्रोताओं अब चूँकि वक्त हो गया है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंजन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मोहरा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, एफएम के

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: और अब श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़ों में फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म करण अर्जुन का ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओ, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ NCERT की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहें लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि ये काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं। साथियों, वो था ग्रेफाइट यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे, यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई, जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB, तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक, इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में यह प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओ, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।

जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी

0: तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
0: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथू सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ

0: दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम।
2: और इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा करें
5: 49 kHz तथा FM 100.5 MHz पर। मैं हूँ आपकी दोस्त राधा।
6: और मैं हूँ कृति।
5: हाँ, कार्यक्रम जोहार रांची में आपका स्वागत है साथियों, मेरे साथ और कृति के साथ। कार्यक्रम शुरू करते हैं एक सुंदर विचार से, क्यों कृति?
6: बिल्कुल।
5: जब देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम और सम्मान देना सबसे बड़ा धन है। रिश्ते पैसों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। सही है दोस्तों, रिश्तों की मधुरता त्योहारों में और भी बढ़ जाती है ना कृति? जब हम दूसरे से मिलते हैं तो प्यार मोहब्बत से ही मिलते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं बहुत ही मोहब्बत से। जैसा कि अभी पावन पवित्र समय दुर्गा पूजा का चल रहा है, ये पर्व हमारे जीवन को और परिवार को नई खुशियां और उमंग से भर देती है। तो चलिए माँ दुर्गा को नमन करते हैं।
6: और माँ दुर्गा को नमन करते हुए हम सुनते हैं एक गीत, क्योंकि आज आरोग्य, ऊर्जा और अष्ट सिद्धि की देवी माँ कुष्मांडा की पूजा है।
5: हाँ, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन माता रानी का।

0: G20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: कृति, आज मौसम की बात ही करें तो आज 14 अक्टूबर है। मौसम आज का दिन रांची का मौसम साफ और धूप रहने की पूरी उम्मीद है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। ये आसिन का मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है। मीठी मीठी प्यारी धूप बारिश के बाद जब हमारे घरों में और हमारे बदन पर पड़ती है तो बहुत ही राहत महसूस करते हैं। क्यों कृति, ऐसा तुम भी महसूस करती होगी?
2: हाँ, और मौसम बदलने के साथ हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ता है। तो हमें सर्दी और गर्मी के बीच का संक्रमण
1: मौसम संक्रमण का काल होता है।
2: तो इस ऐसे में हमें हल्का गर्म भोजन करना चाहिए और सर्दी जुखाम से बचने के लिए अदरक, तुलसी, इसकी चाय पीनी चाहिए और हल्दी वाला दूध भी पीना चाहिए।
1: हाँ, इस मीठे मौसम का स्वागत करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: कृति, आज का मौसम और अभी का मौसम कितना खूबसूरत होता है ना, अक्टूबर का मौसम, और उसमें ये पूजा पाठ और दशहरे का मौसम, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा ना?
5: हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है।
4: तो साथियों, ये मौसम बड़ी ही खूबसूरत और सुहावना है। ऐसे मौसम में घूमने का अपना एक अलग ही आनंद है। अगर आप घूमने की कहीं सोच रहे हैं तो विंध्याचल धाम जरूर जाएं। अभी माता रानी की पूजा अर्चना भी है और विंध्याचल धाम, जो मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र शक्तिपीठ है। कृति, यहाँ जाने के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, गया जी से भी यहाँ आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से माँ विंध्यवासिनी की पूजा की जाती है, जिन्हें माता दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। पता है कृति, कहा जाता है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तब उन्होंने विंध्य पर्वत को ही अपना अस्थाई निवास बनाया था। पुराण में भी यह वर्णित है कि यहाँ माँ दुर्गा सशरीर विराजमान रहती है।
5: और एक दिलचस्प बात यह भी है कि विंध्याचल की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त त्रिकोण परिक्रमा पूरी ना कर ले। तो आप जाने की तैयारी करें विंध्याचल जाने की, या अपना मन बनाए, तब तक के लिए सुनते हैं यह गीत।

0: करेंगे हम समझ के सिर्फ बचाएंगे नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: कृति बातें तो हम कर ही रहे हैं तो इतिहास की ओर भी रुख करते हैं। आज के दिन यानी 14 अक्टूबर को देश और दुनिया की कुछ अहम जानकारी हम श्रोताओं को दे देते हैं। आज के दिन 1953 में भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया था स्वीकृति और आज के ही दिन 14 अक्टूबर को 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था।
4: हाँ, और 1882 में आज ही के दिन पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी।
3: हाँ, और आज के ही दिन 1964 में डॉक्टर मार्टिन लूथर क्यों जूनियर को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो और सुनते हैं प्यारा सा नगमा और श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: इसके साथ ही संपन्न होता है हमारा कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं को हमारा और कृतिका
1: जोहार,
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सुनिए राजेश कुमार झा से, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं राज हॉस्पिटल के।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम इनसे मिलिए में। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर राजेश कुमार झा, जो राज हॉस्पिटल रांची के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही वाइटैलिटी कार्डियक क्लिनिक के भी सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर हमारे श्रोताओं को संक्षेप में आपका परिचय बताएं। सर
2: नमस्कार श्रोतागण, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे बारे में। मैं राजेश कुमार झा हूं और मेरी इनिशियल पढ़ाई बिहार में हुई थी 6-7 तक। उसके बाद फिर मैं पापा रांची आ गए तो मैं भी रांची आ गया। रांची से मैंने 10th और 12th किया, फिर MBBS एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहली बार नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में। फिर MBBS मैंने मुंबई से किया, फिर MD मेडिसिन मैंने रांची से किया, DM कार्डियोलॉजी मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया, फिर वहीं पर मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट था GB पंत हॉस्पिटल में और आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। फिर वहाँ से मैं राज हॉस्पिटल रांची में आर्टेमिस हॉस्पिटल का एक ग्रुप कार्डियोलॉजी सेंटर मैंने यहाँ पर स्टैब्लिश किया से। जो मैं इम्पॉर्टेंट है आजकल जो युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग मेडिकल अभी नीट का काफ़ी चल रहा था चर्चा, तो मैंने जानबूझकर आपको ये बताया कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में MBBS हुआ था, कि ऐसे लोग जिनको पहली बार नहीं होता है उनको हताश नहीं होना चाहिए, और मैं भी हताश नहीं हुआ था और पूरी एनर्जी से अगली बार मैंने दिया और प्रैक्टिस करता हूँ, हेल्दी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों को, यंग जनरेशन को, कि हताश नहीं होना चाहिए और मेहनत से, लगन से। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी भी नहीं था, लेकिन बहुत मेहनती था हमेशा। मैं पढ़ाई काफ़ी लंबे टाइम तक करता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंटेलिजेंट हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर यही करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना टाइम आप डिवोट करते हैं अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस समय के लिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: ये इंटेलिजेंस और डिलिजेंस का जो सर आपने फर्क बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए। परसीवियरेंस होना चाहिए कि जब आपने गोल डिसाइड किया तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलते रहें।
2: जी,
1: आप दौड़ेंगे तो थक सकते हैं, लेकिन चलेंगे तो आप लंबा चल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आने से मिली
2: डॉक्टर बनना है तो मैं देखता था, फिर एक बार बीमार पड़े। मैं रांची में बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 94-95 की बात। उस समय पापा को लेकर रात को हम लोग 2 बजे गए थे सेवा सदन, गए राज हॉस्पिटल, यही 2 हॉस्पिटल होता था रांची में, रिम्स जाते नहीं थे। तो उस समय मुझे लगा कि यहाँ काफ़ी अभाव है, क्योंकि मैं एक बार दिल्ली गया था, देखा वहाँ काफ़ी सारे सुविधाएँ हैं, और यही सोचकर मैं उसी टाइम डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और ये भी डिसाइड किया कि मैं महानगर में नहीं रहूँगा। उस समय यही ये नहीं पता था कि रांची ही रहना है, लेकिन ये था कि मैं छोटे शहर में रहूंगा क्योंकि सुविधाएं कम हैं। तो
1: कहीं ना कहीं सर उस अभाव ने आपको एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक प्रेरक के तौर पर उसने आपको आगे बढ़ाया।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: सुविधाएं होनी चाहिए।
2: हर आदमी जो भी आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कैटलिस्ट जरूर मिलता है जो आपको प्रेरित करता है कि नहीं ये करना है, तभी आप आगे बढ़ते हैं।
1: सर उस दौर से जब वो एक हताशा का दौर होता है, घर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति बीमार होता है तो बड़ी निराशा वाली स्थिति बनती है, और वहां से सर आज आप जिस जगह बैठे हैं कि एक वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आप रांची में हैं और बहुत लंबी आपकी प्रैक्टिस है, तो इस यात्रा का मूल्यांकन कैसे करते हैं सर?
2: मैं तो यही कहूंगा, ये एक फेज वाइज होता गया, रास्ते में कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस भी आए और वो तो आएगा ही, कोई भी आप कहीं भी चलते हैं तो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, बस उसको सक्सेसफुली और थोड़ा पेशेंस रख करके उसको हैंडल करना है, और जो जैसा मैंने बताया निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो मैं भी वही मेहनती था, मेहनत करता रहा, और एक जो हमारे सर थे सफदरजंग हॉस्पिटल में, उन्होंने उन्होंने मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जब मैं डीएम कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ और लाइफ में एक चीज जरूर है कि अगर तुम अपने काम के साथ और अपने पेशेंट के साथ ईमानदारी रखोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर के कार्डियोलॉजिस्ट से होते हुए डायरेक्टर मैं बना हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा काम के लिए ईमानदारी और जितना मेहनत कर सकते हैं वो किया है। तो वो चीज मुझे सीख अभी तक मिली हुई है और जब मैं आर्टिमिस में गया तो वहाँ के डायरेक्टर जो थे उन्होंने भी मुझे यही बोला और मैंने उनको यही बोला ही वॉज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड तो वो काफ़ी ईमानदार आदमी है। तो वो चीज़ मेरे अंदर अभी भी है और आशा करता हूँ कि पूरी जीवन ये चीज़ मेरे लिए रहे।
1: ये बड़ी प्रेरणादायक बात आपने कही सर कि अपना कार्य अगर हम ईमानदारी से करें और एक एक ध्येय की तरफ हम चलते रहें तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती जाती हैं।
2: जी
1: और जो आपने अवरोधों की बात की तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सर आपने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर कई बार जीवन और मृत्यु की कॉल्स भी ली होंगी, कई बार स्प्लिट सेकेंड के डिसीजंस लिए होंगे सर जिनसे किसी पेशेंट की जान बची होगी, कई बार सर ऐसा नहीं भी हुआ होगा जबकि एज अ डॉक्टर आपको हमेशा पता रहता है कि पेशेंट का आउटकम क्या है। इन स्थितियों को सर आप स्वयं के लिए कैसे मैनेज करते हैं और पेशेंट के परिजनों के लिए कैसे मैनेज करते हैं?
2: एक्चुअली पहले और अभी में प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क आ गया है। पहले लोगों को जो जनरल लोग हैं उनको ज्ञान का अभाव होता था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें उन्हें मालूम नहीं होता था, वो यही समझते थे कि डॉक्टर साहब के यहाँ है पेशेंट, अब भगवान चाहेंगे तो बचेंगे नहीं तो नहीं बचेंगे। तो डॉक्टर भी ईमानदारी से काम करते थे जैसा भी रिजल्ट रहा। आज के डेट में क्या हुआ है, युवा स्पेशली चैट जीपीटी और बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके और इतने सारे सवाल करते हैं तो उसमें और जनरल आदमी को ये नहीं पता कि जब हम इंटरवेंशन करते हैं उस समय 1-2 मिनट का ही फर्क होता है और कई बार हमने देखा 1-2 मिनट में ही पेशेंट का जान भी बचा है, 1-2 मिनट में ही फील हो जाता है कि अब ये नहीं बच सकते हैं। तो वो जो टाइम होता है हमारे लिए वो बहुत ही खराब टाइम होता है क्योंकि एड्रिनर्जिक लेवल जो है ना, एड्रिनलिन लेवल हमारे शरीर में वो फुल टाइम हाई होता है। तो ये जो इमोशन का जो हमारा अप एंड डाउन होता है इसी वजह से आप देखे होंगे कि अभी जो डॉक्टरों का एवरेज एज इंडिया में 70 है लेकिन जो डॉक्टरों का एवरेज एज अभी 60 या 65 ऐसी कुछ है, 5 से 10 साल कम है। और वो ये जो स्ट्रेस लेवल है ना जनरल लोग नहीं समझ सकते हैं जो हम लोग फील करते हैं। और मानिए ना मानिए एक चीज तो जरूर है कि ये जो भी होता है वो सारा श्रेय हम लोग कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति है, भगवान है, जो भी जैसे बोलिए, जरूर है क्योंकि उनके बिना हम भी अंदर जाते हैं तो यही सोचकर कि बढ़िया से हो जाए, आने के बाद हमेशा धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि वो 2 मिनट ऐसा होता है जिसमें आप एक्सपर्ट कितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं अगर पेशेंट को बचना है तो डेफिनेटली बच जाते हैं।
1: एक्चुअल में सर मेरा प्रश्न ये होने वाला था ये चैट जीपीटी और यूथ को लेकर के कि ये वेब एमडी से संबंधित जानकारियां और तमाम अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है जो सामान्य जानकारियां दे देते
2: जी,
1: हैं
2: जी।
1: तो एक डॉक्टर एज अ डॉक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी तक पहुंचने के लिए आप लोग अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष उसमें डिवोट करते हैं
2: जी।
1: वर्सेस कोई एक व्यक्ति आता है और वो प्रश्न पूछने लगता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया
2: जी।
1: तो ऐसे में सर थोड़ा सा जो स्ट्रेस लेवल की आपने बात की, आप लोग अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं?
2: देखिए पहले किया था होते हो पूछने वाले, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया है कि वो भी अपनी जगह पर जायज है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो पेशेंट है उनके लिए एक ही पेशेंट है, हमारे लिए तो बहुत सारे पेशेंट हैं तो हर पेशेंट अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनके लिए उनके जो रिलेटिव हैं उनके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाग में तो अब हम लोग यही है कि मैं तो करता ही हूँ और सबसे मैं यही बोलूंगा कि हम लोगों को भी थोड़ा पेशेंसली उनको समझाना पड़ेगा कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग प्रॉपर होना सबसे ज्यादा जरूरी।
1: संवाद होना आवश्यक
2: संवाद,
1: है।
2: बिना संवाद के अगर हम काम करते हैं तभी ये प्रॉब्लम होता है। तो अब ये आदत सी हो गई है, लोग पूछते हैं, पेशेंसली कूल होकर उनको जवाब दीजिए तो उनको भी अच्छे से समझ में आता है। बस थोड़ा हमें भी समय डिवोट करना पड़ता है और उनको भी सामने वाले को समझना चाहिए। अब उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझना चाहते हैं, तो अब सबको आप सेटिस्फाई
1: नहीं कर सकते हैं उसमें। सर, नीतिगत तौर पर अगर देखें, अगर पॉलिसी लेवल पर हम लोग जाकर देखें, तो एक वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक होने के नाते पॉलिसी लेवल पर आप क्या चेंजेस चाहेंगे, जिससे मास लेवल पर, जिससे आम पब्लिक को, सामान्य जन को हृदय रोग की समस्या निवारण सके।
2: आयुष्मान भारत योजना जो है, इससे पहले भी दो तीन योजनाएं हुई थी, लेकिन आयुष्मान भारत योजना में मैं देखता हूं कि ये अब मैं 2017 या 18 से झारखंड में आयुष्मान योजना से लोगों का कर रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का किया है जो जीवन में मुझे मालूम है कि ये दवाई कैसे खाएंगे ये मैं सोचता था, लेकिन फिर भी उनको मैंने एंजियोप्लास्टी किया। अभी काफ़ी सारी योजनाएँ, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी चीज़ें, दवाइयाँ अवेलेबल रहती हैं, एटलीस्ट ब्लड थिनर और जो एटीन होती है उसका रेट भी सरकार ने फिक्स कर दिया है। तो अगर लोगों के मन में कई बार भय होता है कि ये ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है, मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत करीब करीब झारखंड थ्रू हम लोग करते हैं। दूसरी पॉलिसी जो झारखंड जैसे स्टेट के लिए, जहां पर अभी भी दुर्गम एरिया में, जिसको हम लोग खूटी ही बोलेंगे, जो कि रांची से हार्डली एक घंटे की डिस्टेंस पर है, लेकिन अभी भी वहां सरकारी अस्पताल में बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ मॉडल अपनाना पड़ेगा जिसमें इंसेंटिव लोगों को थोड़ा ज़्यादा आप सैलरी दे करके डॉक्टर को रखें, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया में कोई भी नहीं जाना चाहते हैं और वो भी इतना पढ़ाई करने के बाद। तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी ऐसा करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को एटलीस्ट बेसिक सुविधाएं और बाकी चीज़ें मिले। ऑल्दो अभी आयुष्मान भारत के बाद मैंने देखा है सदर अस्पताल जो भी हैं स्टेट में, उसकी स्थिति काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उसमें यही है कि कैथ लैब और बाकी चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो होने के लिए हम लोगों को थोड़ा अलग से प्लानिंग करना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर और नर्सेस वहाँ फुल टाइम रहें, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले।
1: एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी सेक्टर से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, दोनों अपनी बात कह सकें और उसके आधार पर कुछ आगे पॉलिसी डिसीजन।
2: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इतने बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल मैनेज करना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं अभी झारखंड में, मैंने देखा है आयुष्मान भारत के अंडर में बहुत सारा NHM जो है, नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो है, उसमें काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को इंक्लूड किया गया है, और इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लोगों को, और संवाद भी होता है, इससे आपस में कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे राय हम भी देते हैं, वहाँ से भी हमें मिलता है, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है।
1: सर, सामाजिक तौर पर भी आपका रांची में काफ़ी नाम लिया जाता है, तो सामाजिक तौर पर आप कैसे सक्रिय रहते हैं?
2: जी, मैं जब MD कर रहा था उस समय हमने यहाँ लोधमा गांव है उसमें पूरे गांव को गोद लिया था। पहली बार हमने देखा कि गांव में बिजली तक नहीं है, तो हमने यहाँ पर KK सोन साहब हुआ करते थे DC, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने काफ़ी सहायता किया, मदद किया, और हम लोग अपने से गाँव में बिजली, लाइब्रेरी खुलवाया हमने, हेल्थ के लिए हमने वहाँ पर रेगुलर कैंप 3 साल तक हम लोग किए, और बैम्बू क्राफ्टिंग के लिए लोगों को, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अभी भी है, यूथ फॉर इक्वालिटी, तो उसके थ्रू हमने असम से एक बॉम्बू के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनको बुलवाया था रांची, और 2 दिन तक उन्होंने वर्कशॉप करवाया था। उसके बाद से अब जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एक NMO है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू मैं थोड़ा सक्रिय रहता हूँ, कैंप वैम्प भी करता हूँ रूरल एरियाज में जा करके।
1: आपकी प्रैक्टिस से जो समय मिलता है सर, बचा हुआ, उसमें आप अपनी हॉबीज को कैसे मैनेज करते हैं? कुछ तो हॉबीज होंगी सर,
2: सही मायने में बोले तो टाइम बहुत कम मिलता है
1: जी,
2: लेकिन कुछ हॉबीज हैं, एक सुबह एक्सरसाइज और योगा करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो मैं सबको सलाह देता हूँ, हार्ट के मरीजों को जो करना चाहिए। और उसके साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि गाड़ी में जब भी जाता हूँ तो 103 अपना जो FM है वो मेरा पसंदीदा FM है, क्योंकि उसमें गाना कंटिन्यूअस चलता है, बकवास कम होता है।
1: सर, ये जो आपने संगीत या मनोरंजन वाले कार्यक्रम की बात आपने कही, तो क्या संगीत का शौक आपको है?
2: जी बिल्कुल, लेकिन ओल्ड सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा पसंद है, नए सॉन्ग्स में कम सुनता हूँ। सहगल साहब और बाकी जो उस समय का, चूँकि मुंबई में हम लोग एक जगह खाना खाने जाते थे बचपन में, तो वहाँ पर अक्सर ये 70s, 50s, 60s का गाना चलता था, तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
1: कोई कोई एक ऐसा फेवरेट सॉन्ग सर जो बड़ा दिल के करीब हो आपके?
2: तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सहगल साहब का कुछ बरसात का मौसम है कुछ चला दीजिए।

0: जी श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर राजेश कुमार झा। आपने हृदय रोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में एक एक झलक उन्होंने दी, जिससे ये पता चलता है कि एक चिकित्सक भी, एक डॉक्टर भी पहले इंसान होता है और तब फिर वो डॉक्टर बनता है, तो वो भी पूरे समाज के विषय में सोचता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपका। इनसे मिलिए कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, लेकिन इस संदेश के बाद।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार. सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर.
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
4: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
4: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

साथियों, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये गाना सुनते हैं हम फिल्म फिर मिलेंगे से। रचना समीर के हैं, संगीत निखिल विनय के और सुर हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम के। इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मिक्का बीरक।

ये अगला गीत जिसे सुनना चाह है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी राज। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा नगमा जो फिल्म दिल है तुम्हारा से लिया गया है। रचना समीर के हैं, इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और स्वर है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। ये अगला गीत जिसे सुनना चाहा है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू और चरण डोंगरी पपरिया से दुर्गा राम साहू। फिल्म है फिल्म फाइव रचना उपेंद्र कुमार उपाध्याय का है, संगीत विभाव का है और सुर है सोनू निगम के। आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, ये अगला गीत है फिल्म ब्रदर्स से। रचना अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, संगीत अजय अतुल के, स्वर हैं सोनू निगम और नितिन मोहन के। इस गीत को सुनना चाहा है हिरिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और रांची यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा है। नाम है विकास, अरुण और गायत्री। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म मेरा साया का ये गीत था। सिंगर मोहम्मद रफ़ी थे और इस गीत की रचना की थी राजा मेहदी अली खान ने। इस गीत को सुनना चाहता उत्तम कुमार भगत और श्वेता भगत, किशु और तासु, पाकुड़, झारखंड से। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का समय हो चुका है, जिसके सूत्रधार हैं लता रानी और रानी शुक्ला। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी श्रोता बहनों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी और परिवार संग प्रसन्न भी। कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ हैं हम दो सखियां, मैं लता
1: और मैं रानी। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए, साथ ही पूरे गृहलक्ष्मी परिवार की ओर से आप सभी बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर आंगन में सुख शांति और खुशहाली का वास हो, यही कामना है हमारी, क्यों लता?
0: बिल्कुल, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है, चारों ओर भक्ति का माहौल है, बाजारों में रौनक है, घरों में तैयारियां चल रही है और हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ खरीदारी में जुटा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: कहीं पूजा की सामग्री खरीदारी की जा रही है तो कहीं मिठाइयां, कपड़े और घर के सजाने के सामान।
1: हाँ बिल्कुल सच लता, त्योहारों का मौसम हो तो घर आंगन से लेकर बाजार तक हर तरफ रौनक दिखाई देती है, लेकिन बहनों इन खुशियों के बीच कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी तो उतना ही आवश्यक है ताकि हमारी खुशियाँ सुरक्षित रहें और त्योहार का आनंद दोगुना हो जाए। और त्योहारों पर तो हम अपने घर और परिवार के लिए कितनी सारी चीजें खरीदते हैं ना लता?
0: हाँ रानी, तुमने भी बहुत कुछ खरीदारी कर रखी होगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बहनों खरीदारी की इस चहल पहल के बीच क्या हम ये भी देखते हैं कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, कितनी गुणवत्ता उसकी कैसी है और क्या वो निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है?
1: बात तो बहुत जरूरी है लता, क्योंकि सामान खरीदते समय हमारी नजर अक्सर उसकी कीमत, रंग और सुंदर पैकिंग पर जाती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना भी तो उतना ही आवश्यक है बहनों।
0: हाँ, और यहीं पर मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बहनों मानक ऐसे निर्धारित नियम और मानदंड हैं जो उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
1: हाँ बहनों, हर चीज की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए कुछ तय नियम और मापदंड होते हैं ताकि हमें सही और सुरक्षित उत्पाद मिल सके, और इन्हीं मानकों के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है।
0: यानी मानक सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं होते बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हर रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर बिजली के उपकरण, हेलमेट, खिलौने और कई दूसरी चीजों की खरीदारी में ये जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ देखना जरूरी है बहनों कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानक पर खरा उतरता है या नहीं।
1: और घर की खरीदारी में तो महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है लता।
0: हाँ।
1: इसलिए सामान खरीदते समय सिर्फ सुंदर पैकिंग या कम कीमत देकर फैसला भी नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल बहनों, रानी बहुत अहम बात कर रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अट्रैक्टिव पैकिंग देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें पैकेट पर दिए गए जरूरी विवरण, गुणवत्ता से जुड़े चिन्ह, निर्माण और समाप्ति की तारीख और मात्रा और अन्य जरूरी जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
1: हाँ, और पता है बहनों, हमारे देश भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता से जुड़े कार्य करता है।
0: हाँ।
1: आपने कई उत्पादों पर ISI चिन्ह देखा होगा, ये उस उत्पाद के भारतीय मानक के अनुरूप होने का संकेत है।
0: हाँ बिल्कुल, और सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर त्योहारों पर गहने खरीदना तो बहुत सी महिलाओं की पसंद होती ही है, ऐसे में सोने की शुद्धता से जुड़ी जानकारी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: हाँ बहनों, त्योहारों में खरीदारी में थोड़ी सी जागरूकता बहुत काम आती है। खाद्य पदार्थों पर FSSAI से संबंधित जानकारी, सोने के आभूषणों पर लागू हॉलमार्क और संबंधित उत्पादों पर आवश्यक गुणवत्ता चिन्हों की जांच करना अच्छी खरीदारी का हिस्सा है। पर ध्यान रहे, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं होता।
0: बिल्कुल, खासकर खाद्य पदार्थों में तो थोड़ी सी लापरवाही भी हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए जागरूक ग्राहक बनना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह हो या उसके बारे में जरूरी जानकारी ना दी गई हो तो सवाल जरूर पूछें।
1: हाँ, क्योंकि सही जानकारी के साथ की गई खरीदारी सिर्फ पैसे की बचत नहीं करती बल्कि हमारे परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है बहनों। और याद रखें, अच्छी चीज सिर्फ वो नहीं जो देखने में अच्छी हो बल्कि वो है जो गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर भी खरी उतरे।
0: हाँ रानी, बहुत सही कहा तुमने। और त्योहारों की असली खुशी तभी है जब हमारी खरीदारी भी सुरक्षित हो और घर परिवार भी खुशहाल रहे। और जागरूक ग्राहक वही है जो सवाल पूछने से नहीं हिचकता और खरीदारी करते समय सही जानकारी हासिल करता है।
1: इसलिए बहनों, आप जब भी बाजार जाए या घर के लिए कोई नया सामान खरीदे तो गुणवत्ता और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे, क्योंकि घर को सुंदर बनाना जितना जरूरी है घर को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। और त्योहारों की असली खुशी महंगी खरीदारी में नहीं बल्कि अपनों के साथ सुरक्षित और सुखद पल बिताने में है।
0: बिल्कुल, इसीलिए इन त्योहारी मौसम में तभी हम खुशियों की बौछार कर पाएंगे और हमारे घर आंगन में खुशियां ही खुशियां छाएंगी।

0: बहनों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बचपन की ओर और संस्कारों की दुनिया।
1: हाँ बिल्कुल बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध हमारे बच्चों के भविष्य और समाज की दिशा से है। क्यों लता?
0: हाँ, संस्कारों का बच्चों के व्यक्तित्व विकास में योगदान। मैंने एक बार हमने जैसा बताया था, कई बार हम हमेशा चर्चा करते हैं कि संस्कारों का बच्चों के व्यक्तित्व विकास में कितना बड़ा योगदान है।
1: हाँ।
0: कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस रूप में ढाला जाता है धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व वैसा ही आकार लेने लगता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उनमें अच्छे संस्कार विकसित करना है, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देती है जबकि संस्कार हमें उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाते हैं।
1: बिल्कुल लता, बचपन जीवन की वो अवस्था है जब बच्चे अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। बहनों, वे माता पिता, दादा दादी, शिक्षक और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार देने की शुरुआत तो घर से ही होती है।
0: हाँ बिल्कुल, आज के डिजिटल युग में मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव भी बच्चों पर तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: सब इससे वाकिफ है और हमको लगता है हर बहनें हमारी जो है वो इस चीज से बहुत ही करीब से इन चीजों को जानती हैं।
1: हाँ।
0: तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनसे खुलकर बातचीत करें और अच्छे बुरे में अंतर करना सिखाएं। और इसकी जगह पर कहानियों, प्रेरक प्रसंगों, पुस्तकों और पारिवारिक गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा लता, ये भी ध्यान रखना जरूरी है बहनों कि संस्कार

0: देने का अर्थ बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपना नहीं है, उनकी जिज्ञासाओं को समझना, सवाल पूछने की स्वतंत्रता देना और गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करना भी अच्छे संस्कारों का हिस्सा है।
1: बिल्कुल, बहुत खूब कहा तुमने रानी। मैंने याद रखिए, संस्कारवान बच्चे जो है केवल अपने परिवार का गौरव नहीं होता बल्कि वह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम बच्चों में प्रेम, ईमानदारी, सहिष्णुता और जिम्मेदारी के बीज बोएंगे ना, तो कल एक संवेदनशील और बेहतर समाज का निर्माण भी यही बच्चे करेंगे।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने लता। और बहनों, बच्चों को केवल सफल बनाने का प्रयास न करें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। क्यों लता?
1: बिल्कुल बढ़ाएं। और कदम बढ़ाने के साथ अब हम आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं और लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स समाधान दीदी।
4: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
5: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
4: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
6: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप
3: लड़का लड़की है बराबर तो पूछना क्यों
4: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
5: तो बहनों हम बात कर रहे थे बच्चों में विकास की और उनमें हम बहनों की हम माताओं की जो संस्कार देने की प्रवृत्ति है उसकी क्योंकि रानी हमें लगता है कि हमारा बच्चा जैसा भी हो हमारे लिए तो वो चांद तारे से कम नहीं
6: बिल्कुल
5: तो चलो बहनों के साथ हम अपने बच्चों के संग चांद तारों की दुनिया में चलते हैं

0: तो रानी, मुझे लगता है कि ये चंदा और सूरज का खूबसूरत गीत सुन करके हम भी चांद तारों की दुनिया की शेयर कराएं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अब बात है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की।
0: बिल्कुल, जो हमें अपने नन्हे मुन्नों को भी सिखाने की जरूरत है।
1: हाँ।
0: तो आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे अनमोल संसाधन जल संरक्षण की। मानो जल ही जीवन है, इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खाने पीने, खाना बनाने, खेती और दैनिक कार्यों के लिए पानी हमारी बुनियादी जरूरत है, लेकिन बढ़ती आबादी, पानी की बर्बादी और भूजल के लगातार गिरते स्तर के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल लता, ऐसे में जल संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है बहनों। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखें, नहाने में जरूरत से ज्यादा पानी खर्च न करें, और घर में कहीं भी नल से पानी टपक रहा हो तो उसकी मरम्मत कराएं।
0: बिल्कुल, और बच्चों को अवश्य सिखाएं कि बच्चे अगर अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं और नल का पानी जो है वो बह रहा है, तो उसे ध्यान से देख कर चेक करके ही बाहर निकले। और ये छोटी छोटी जो पहल है ना बहनों, वो बहुत अहम है, और इससे हम थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत संरक्षण जो है की जरूरत है और उसे हम पूरा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बहनों, बारिश के पानी को वर्षा जल संचयन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है, ये हम अब अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो साथ ही पेड़ पौधे लगाकर और तालाबों व कुओं जैसे पारंपरिक जल स्रोतों को भी बचाकर भी हम जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दे सकते हैं, और ये हमें करना चाहिए। और याद रखे बहनों कि पानी की हर बूंद कीमती है।
1: हाँ, और साथ ही ये भी याद रखिए बहनों कि पानी बचाने के लिए हमें किसी बड़े अभियान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में पानी की बर्बादी रोककर वर्षा जल संचयन, जैसा कि लता ने कहा, इसको बढ़ावा देकर और दूसरों को जागरूक करके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाँ। आज हम पानी बचाएंगे लता, तभी तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे।
0: हाँ, और बहनों, आज इसी जानकारी के साथ हम यह संकल्प ले कि न पानी बर्बाद करेंगे न दूसरों को करने देंगे।
1: बिल्कुल,
0: जल बचाएं, जीवन बचाएं। और इसी संदेश के साथ अब हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो वाकई इस माता रानी की भजन को सुन करके हम सब भक्तिमय हो उठे।
1: बिल्कुल।
0: और बहनों, त्योहारी मौसम चल रहा है, माता रानी के दरबार में हम सब उपस्थित हैं, और आइए हम इसी के साथ कार्यक्रम के जरिए ही हम माता रानी की उपासना करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और इसी के साथ अब लता समय हो गया है
0: बहनों से विदा लेने का। तो बहनों, चलते चलते आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। तो अब अपनी सखी लता
1: और रानी को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप मेरे साथ यानी अपनी दोस्त राधा के साथ सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जो आपके लिए है।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: साथियों कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि दुख हमें होता है तो दुख का सबसे बड़ा कारण दूसरों से हद से ज्यादा उम्मीदें रखना है। अपनी खुशी की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ मत दीजिए।

साथियों, मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहती हूँ कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि अनुभवों और ठोकरों से आती हैं। गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप और हम कोशिश करते रहते हैं, और कोशिश करना भी जीवन का आधार है और उद्देश्य भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत ने तपेदिक के खिलाफ हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। वर्ष 2015 से 2024 के बीच नए मामलों में 21% की कमी दर्ज। बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा। राज्य के जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों को उपलब्ध होगा बेहतर इलाज। आईसीयू सीसीयू बेड बढ़ाने की तैयारी। ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं होंगी मजबूत। भाजपा प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची, प्रदेश कार्यालय में करेंगे बैठक। कहा, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ कर रहे काम। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज खुलेंगे कई प्रमुख पंडालों के पट। प्रशासन ने की सुरक्षा की व्यापक तैयारी। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में देश में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 12% रही। भारत में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है। केंद्र सरकार ने टीबी उन्मूलन के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। दवा प्रतिरोधी टीबी के मरीजों के लिए 6 महीने का नया और कम अवधि वाला BPALM उपचार भी शुरू किया गया है। राज्य के जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आईसीयू सीसीयू और ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने समीक्षा बैठक में कहा कि 10-15% बिस्तरों को आईसीयू और सीसीयू में बदलने पर विचार किया जाएगा और 5 या 6 सक्षम सदर अस्पतालों में पायलट आधार पर DNB पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों में 5,25,00,000 रुपए की लागत से 21 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के अनुसार इससे लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल आज रांची पहुंचे। पत्रकारों से पटेल के बैठक में वे हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के पूर्व सांसद बृजमोहन राम अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यपाल का जिम्मा देना गर्व का क्षण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश के साथ में कि सबका साथ और सबका विकास, महामहिम राज्यपालों की जो नीतियां हुई है उसमें आप झारखंड के ही एक अनुसूचित जाति वर्ग के एक हमारे सम्मानीय कार्यकर्ता थे, बहुत वरिष्ठ कर हमारे नेता भी हैं, उनको महामहिम राज्यपाल बनाया है और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच का एक छोटा सा कार्यकर्ता को इस प्रदेश की कमान सौंपी है।
0: संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने देवघर के मोहनपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की सभी शाखाओं, अभिलेखों के रखरखाव, कर्मचारियों की उपस्थिति, पंजी और जन शिकायतों से संबंधित फाइलों की बारीकी से जांच की। उन्होंने अंचल अधिकारी को जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।
2: निरीक्षण का संबंध कार्यालय कार्यों में या फिर कहीं किसी योजना आदि के एग्जीक्यूशन में यदि किसी तरह की खामी तो उसको सुधार करना है, प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह से दुरुस्त करना है ताकि जन समस्या का निराकरण सौ समय हो, लोक कल्याणकारी कार्यों में विशेष रुचि ले, इसका लाभ आम जनता को।
0: भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के बीच टाटा पावर ने डेटा सेंटर क्षेत्र में अपनी कारोबारी संभावनाओं को मजबूत किया है। टाटा पावर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी 18 प्रमुख वैश्विक और घरेलू डेटा सेंटर संचालकों के साथ 29 सक्रिय कार्यक्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इस पोर्टफोलियो में कंपनी के वितरण नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले आगामी डेटा सेंटरों की लगभग 430 मेगावाट बिजली मांग, पारेषण से संबंधित 1,236 मेगावाट के अवसर और 1,150 मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है कौशल विकास तकनीकी शिक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कहा कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की सफलता के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है।
3: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है।
0: बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। आरसेटी से प्रशिक्षण के बाद कई लोगों ने स्वरोजगार शुरू कर अपनी अलग पहचान बनाई है। बोकारो के अनिल कुमार और नीतू कुमारी ने बताया कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
4: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा युवती जी उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं। कृषि संबंधित प्रशिक्षण होता है, प्रोसेस प्रोडक्ट संबंधित प्रशिक्षण होते हैं।
5: मेरा नाम अनिल कुमार है। प्रधानमंत्री जी के बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ और कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया। टाइपिंग कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश का, जिससे मेरी 10 से 15 हजार की आमदनी हो जाती है।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक गिरावट के साथ 22,692 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,27,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है। आज चतुर्थी पर रांची में कई प्रमुख पूजा पंडालों के पट खोले जाएंगे। इधर कोडरमा में कल आधी रात के बाद एसपी कुमार शिवाशीष ने कोडरमा और झुमरी तिलैया शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों शहरों की पेट्रोलिंग पार्टी और पैंथर यूनिट को खास दिशा निर्देश देते हुए इस त्योहारी मौसम में रात के समय विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया।
6: दुर्गा पूजा का समय अच्छा पेट्रोलिंग करते रहे, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स के आसपास पेट्रोलिंग अच्छे से करते रहे। तक जुलूस खत्म नहीं होता तब तक उनके साथ रहे। पेट्रोलिंग इफेक्टिव हो रही है, टोटल 4 बाइक पार्टीज बना रहे हैं, हमारे सिविल दस्ता भी रहेंगे और इसके अलावा हम लोग के पास टोटल अप्रोक्सीमेटली 300 एक्स्ट्रा फोर्स है और 200 एक्स्ट्रा होमगार्ड आ रहे हैं, तो 500 लोगों की हम लोग टोटल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं।
0: क्रिकेट, भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराने के बाद भारत 5 मैचों की इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत ने तपेदिक के खिलाफ हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। वर्ष 2015 से 2024 के बीच नए मामलों में 21% की कमी दर्ज। बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा। राज्य के जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों को उपलब्ध होगा बेहतर इलाज। आईसीयू सीसीयू बेड बढ़ाने की तैयारी। ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं होंगी मजबूत। भाजपा प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची। प्रदेश कार्यालय में करेंगे बैठक। कहा प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ कर रहे काम। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज खुलेंगे कई प्रमुख पंडालों के पट। प्रशासन ने की सुरक्षा की व्यापक तैयारी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। साथियों, उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कलाकार हैं शोभा गुड्डू, बोल है छोड़ो छोड़ो डगरिया और राग है मिस्र पहाड़ी में ये ठुमरी।

0: नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप
3: आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी कलाकार थे शोभा गुट्टू

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे चुनिंदा चंद गजलें। कलाकार हैं आशा भोसले।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।

0: The combined GDP of around $10 trillion before 2014, which has now risen to approximately $70 trillion.
1: Our idea is to open India's market for the world as we wish to see other markets opened for us. So from $10 trillion of GDP, which was opened to India on a preferential market basis until 2014, today, as we speak, we have trade agreements covering $70 trillion of GDP. Many other negotiations ongoing will take this figure up to about $85 trillion out of $115 trillion.
0: Canada and India have intensified negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA, aiming to conclude the pact by the end of 2026, following the fifth round of talks in Ottawa from October 5 to 9. The two countries are seeking to expand bilateral trade and investment amid efforts to strengthen economic Piyush Goyal in New Delhi this week on the sidelines of a Canadian trade mission to India. According to Global Affairs Canada, the ministers reviewed progress in negotiations and discussed ways to advance the proposed agreement. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision strengthened infrastructure in strategically important border areas as a key pillar of India's development and national security efforts. A report.
2: Located at an altitude of approximately 13,000 feet in Arunachal Pradesh, the Sela Tunnel represents a significant engineering achievement in the challenging terrain of the eastern Himalayas. Built at a cost of around 825 crore rupees, the project comprises two tunnels measuring approximately 1,003 meter and 1,595 meter in length. It has been designed to provide more reliable connectivity between Tejpur in Assam and Tawang in Arunachal Pradesh, particularly during periods of heavy snowfall and adverse weather conditions. The tunnel holds immense strategic significance as it helps overcome the challenges posed by the high-altitude Sela Pass. Improved connectivity facilitates the movement of armed forces, military equipment and essential supplies, thereby strengthening operational preparedness in this sensitive border region. Beyond its strategic importance, the project also carries significant benefits for local communities. More dependable road connectivity can improve access to healthcare, education, essential services, and market. Reflect India's continued emphasis on developing modern infrastructure in remote and border areas, ensuring that geographical challenges do not become barriers to progress. A vital link between security and development, the Sela Tunnel stands as a symbol of engineering excellence, improved connectivity, and the nation's commitment to strengthen its border regions. This is N. Gulshan Rana for Akashvani News from Jammu.
0: The Delhi government has passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years in public office. Addressing a press conference in New Delhi, Chief Minister said that improve the standard of living in the country's citizens, foster progress, and drive the development of states. This is Akashvani giving you the news.
3: At AIR News Alerts and listen to AIR News on EB Shubd.
0: India's wholesale price index WPI based inflation rose sharply to 11.39% from according to the provisional data released by the Ministry of Commerce and Industry. The annual inflation last month was driven by higher prices of mineral oils, food articles, crude petroleum and natural gas, coal and lignite, basic metals, chemicals and chemical products, textiles, rubber and plastic products, and electrical equipment. Among the major categories in WPI, year-on-year inflation in the fuel and power group surged to 25.85% last month from 22.93% in August. Inflation in manufactured products rose to 9.76% from 8.37%, and inflation in primary articles edged up to 8.67% from 7.76% during the same period. India has recorded a 21% decline in new tuberculosis cases between 2015 and 2024, compared to a 12% global decline. According to WHO's Global Tuberculosis Report, the country's TB treatment coverage has reached 92% against the global average of 78%. Our correspondent reports that the government has intensified efforts towards eliminating tuberculosis through expanded screening, advanced technology, and community participation.
4: India's declining TB incidence reflects the impact of sustained public health efforts, strong community participation, and continued commitment to strengthening tuberculosis prevention and control initiatives across the country. Under the TB Mukt Bharat Abhiyan, more than 28 crore people have been screened, over 20 lakh individuals have received TB preventive treatment, and 5,70,000 new Nikshay Mitras have joined the initiative. The National TB Elimination Program provides free screening and treatment services at all public health facilities and private healthcare centers. Health and Family Welfare Ministry has launched Josh Joint Squad for Health to further strengthen community participation in India's fight against tuberculosis. With Dipendra Kumar, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: Delhi's Special Executive Magistrate Court today remanded Cockroach Janata Party leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka to 5 days of judicial custody, while another leader, Ajinkya Shinde, has been released on a personal bond. The three were detained by Delhi police over allegations of attempting to enter Jantar Mantar a day after it was denotified as a protest site. Facing criticism over the diesel deal with Russia, US President Donald Trump defended the deal to release Russian diesel into global markets, saying it is intended to ease high fuel prices and is not meant for the United States. Trump said last Friday that Russia will supply more than 3 lakh tons of diesel, followed by 5 lakh tons in November and 1 million tons thereafter. The US Treasury Department issued a temporary license easing sanctions on Russian diesel shipments until 7th of April 2027. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Jammu and Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu and Puducherry for the day. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied with hailstorm over Haryana, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Punjab and West Rajasthan till Friday. IMD said that thunderstorms accompanied by lightning and lightning over Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan and Vidarbha, Himachal Pradesh, Keralam and South Interior Karnataka during the next 2 days. In men's cricket, India will face West Indies in the 4th T20 International in Hyderabad today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. India lead the 5-match series 2-1 after defeating West Indies by 14 runs in the 3rd T20I in Indore last Sunday. In badminton, Tanvi Sharma and Kidambi Srikanth progressed to the second round of the Denmark Open 2026 after securing hard-fought victories in their opening matches. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% down in afternoon session today. Sensex fell 351 points to 72,682, while Nifty lost 125 points to 22,598 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dipped marginally, while small-cap 100 index declined 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India proposes developing joint India-ASEAN research agenda focused on maritime security and emerging technologies. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, world is moving towards new international order with wide range of countries playing greater role in global affairs. Wholesale price index inflation rises to 11.39% in September this year. IMD forecasts heavy rainfall over Jammu Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu and Puducherry for today. And in cricket, India to take on West Indies in 4th T20 International in Hyderabad today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
5: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
6: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय हैं आगे बढ़ाता है।
5: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
6: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
5: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
7: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
5: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
1: From $10 trillion of GDP.
4: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे

0: लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य 115 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से 85 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुंच बढ़ाना है।
1: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
0: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
2: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
3: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1,500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत में टीवी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीवी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीवी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीवी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
5: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। ये चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैनिक उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुँच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और भी में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सैनिकों का कार्यक्रम जय भारती में आप सभी श्रोताओं एवं हमारे वीर सैनिकों का स्वागत है। इस संदेश के बाद सुनते हैं ये पहला गीत जो आपके लिए है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार. सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर.
2: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है.
3: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है.
4: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है.
5: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग. योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20. सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.
4: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
6: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है. E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ. फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर.
4: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस.
7: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.
5: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं. देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं.
3: सब तो बढ़िया चल रहे हैं.
5: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं.
3: इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए.
7: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.

कार्यक्रम जय भारती में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे फौजी भाइयों, आपके लिए कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। हम आपके जिंदा दिली और देश के लिए मर मिटने की ताकत को सलाम करते हैं।

0: संकल्प को रेखांकित करते हुए कल फिर एक नए विषय के साथ इसी समय आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनधन खाता और वित्तीय समावेशन। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 4:50 हो चुके हैं। अब वक्त है कार्यक्रम सांझ सरगम का। ये कार्यक्रम आप कुछ ही पलों में सुनेंगे।

क्यों डरता। नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ढलते हुए सूरज की मध्यम रोशनी और चाय की चुस्की और आपके पसंदीदा नगमों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त प्रतीक्षा पांडे। और कार्यक्रम चल रहा है सांस सरगम, और जिसमें हम प्ले कर चुके हैं अपना पहला गाना।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सांस सरगम, और भाई दिन भर की थकान को शाम का सुकून बना दो, दिन भर की थकान को शाम का सुकून बना दो, चलो आज खुद से ही मुस्कुराकर हाथ मिला लो, तो बस अपनी सारी चिंताओं को जरा देर के लिए साइड रख दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम सजा लाए हैं आपके लिए सुरों की महफिल और इसमें लेकर आए हैं हम आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला नगमा।

0: हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: इसी के साथ हमारा सांस संगम कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।
4: नमस्कार, अब तक के समाचारों के में आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के बाद श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। रांची में IMA झारखंड समेत डॉक्टरों के 10 प्रमुख चिकित्सा संगठनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा की मांग को लेकर संयुक्त आंदोलन शुरू किया है। डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और आयुष्मान भारत योजना के बकाया भुगतान की मांग की है। संगठनों ने 22 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी भी दी है। उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक हुई। इसमें ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से शेष 34,886 छात्र छात्राओं के आवेदनों को मंजूरी देते हुए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई। इससे पहले जिले में 65,545 आवेदनों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। मेदिनीनगर के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। पलामू जिले के 690 पूजा पंडालों में सुरक्षा के लिए 400 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। SP कपिल चौधरी ने बताया कि सभी पंडालों में CCTV की व्यवस्था पुख्ता रहेगी। गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क में कल OBC मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष शुभम गुप्ता ने बताया कि इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कई प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। मोर्चा अपनी प्रमुख मांग जनगणना में OBCC कॉलम जोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपेगा। राज्य के 4 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में गर्मी और उमस बनी रहेगी। आज कोडरमा में सर्वाधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में सबसे कम 16.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूँ छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी दे देते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका श्रेया घोषाल के गाए कुछ प्यारे प्यारे नगमे। संध्या के 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी हरी साग सब्जियों की खेती के बारे में। मनोरंजन होगा कुरमाली लोकगीत से संतोष महतो और साथियों के स्वर में। भेंट वार्ता सुनवाया जाएगा शिमला मिर्च की खेती के बारे में। भेंट वार्ताकार हैं पिंकी हिस्सा, भेंट करता है कोमल नायक। हो लोकगीत आप सुनेंगे सुभाष चंद्र होनागत और साथियों के स्वर में। बाजार भाव बतलाया जाएगा और संध्या के 6 पुनः आपको ले चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

श्रोताओं, संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा, जिसमें जानकारी की बातें होंगी। इसमें आप नेप 2020 में मातृभाषा का प्रयोग के बारे में सुनेंगे। जोम नामा गीत सुनेंगे आप सुकमती बिरूली और साथियों के स्वर में। इसके अलावा भेंटवार्ता या नाटक सुन सकते हैं। मनोरंजन करवाया जाएगा हिंदी लोकगीत से फूलमती पात पिंगवा और साथियों के स्वर में। 6:30 से 6:55 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। संध्या के 6:55 पर आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

संध्या के 7:15 से रात्रि के 8 तक आपको हम सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 से 8:45 पर आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है। 8:45 से रात्रि के 9 तक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9 से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9:15 से रात्रि के 10 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 से 11 तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 से 11:05 पर होगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि के 11:05 से 11:10 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में श्रेया घोषाल के गाए कुछ नगमे। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं श्रेया घोषाल के गाए कुछ गीत।

श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जब वी मेट का ये नगमा। आशी इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता छवि के साथ। आज आपको मैं सुनवा रही हूँ श्रेया घोषाल की आवाज में चंद फिल्मी नगमे। तो अब आपको सुनवाते हैं जहर फिल्म का ये गीत। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही काई का, श्रेया घोषाल के काये कुछ गीत। अभी आप सुन रहे थे फिल्म पीके का ये गीत। अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं राज 3 फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाई बसा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका श्रेया घोषाल को। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी, बस कुछ ही पलों में।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हरी साग सब्जियों की खेती, आज हम इस विषय पर आप सभी को जानकारी देंगे, साथ ही कुछ जरूरी संदेश भी सुनवाएंगे, आनंद लेंगे कुरमाली लोकगीत का और सुनवाएंगे एक वार्ता। तो किसान भाई बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में यानी रबी सीजन में हरी साग सब्जियों की खेती करना बेहद मुनाफे का सौदा होता है, क्योंकि इस मौसम में इनकी मांग बाजारों में बहुत ज़्यादा रहती है। हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए जीवाश्म युक्त उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था हो। खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। बुआई से पहले प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद अच्छी मात्रा में खेतों में मिट्टी के साथ मिला देना चाहिए। मेथी और अन्य बीजों को बोने से पहले 8 से 12 घंटे पानी में भिगोने से अंकुरण तेजी से होता है। बीजों को फफूंदनाशक या जैविक रूप से गोमूत्र से उपचारित जरूर करना चाहिए। बीजों को छिड़काव विधि या कतारों में 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। सर्दियों में हरी सब्जियों को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए हल्का और नियमित पानी देना चाहिए। इसके लिए फव्वारा सिंचाई सबसे बेहतरीन पहली और हर कटाई के बाद थोड़ा जैविक खाद देने से पत्तियां तेजी से दोबारा बढ़ती है और हरी बनी रहती है। किसान भाई बहनों, पालक की बुआई अक्टूबर से नवंबर में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह 25 से 30 दिनों में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। मेथी की बुआई भी अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। बथुआ और चौलाई इन्हें अक्सर मुख्य फसलों के साथ या अलग से क्यारियों में उगाया जाता है। हरा धनिया सितंबर से नवंबर के बीच क्यारियों या गमलों में आसानी से हम उगा सकते हैं। हमेशा सरकारी प्रमाणित या विश्वसनीय दुकान के उन्नत और रोग प्रतिरोधी बीजों का ही चयन करना चाहिए। पौधों को बहुत पास पास ना लगाएं, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की उचित दूरी बनाए रखें, ताकि पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। अत्यधिक ठंड या कोहरे के दिनों में फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम के समय आप हल्की सी सिंचाई कर दें और खेतों के चारों ओर आप धुआं लगा सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी हरी साग सब्जियों की खेती के बारे में।
1: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है।

इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इसे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।

0: किसान भाई बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे कुरमाली लोकगीत का संतोष महतो और साथी के स्वरों में। अब हम जानकारी लेते हैं शिमला मिर्च की खेती किस तरह से करनी चाहिए और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं पिंकी हस्सा।
1: मैं पिंकी हस्सा, मैं कोपे गांव से बोल रही हूँ और मैं एक महिला किसान हूँ। आज आप लोगों को शिमला मिर्च की बागवानी या खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि इसे किस

तक आदि प्रदेशों में अच्छी तरह से की जाती है, लेकिन अभी हमारे झारखंड में भी इसकी खेती शुरू की जा चुकी है। तो जानते हैं कैसे शिमला मिर्च की खेती को हम लोग वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं और आप इससे किस तरह से लाभदायक व्यवसाय बना सकते हैं। तो किसान भाई और बहनों, शिमला मिर्च की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप 2 से 4 महीने में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से शिमला मिर्च की उन्नत खेती करते हैं तो आपको 4 महीने में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। शिमला मिर्च की खेती बहुत ही कम पूंजी से शुरू की जा सकती है, इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की जलवायु के अनुसार इसकी अच्छी खेती या फसल हो सकती है और इसकी मांग भी बहुत अच्छी है। इसमें हम लोग देखते हैं किसान भाई और बहनों, सबसे पहले हम लोग को भूमि का चयन करना चाहिए जो इस खेती के लिए, इस बागवानी के लिए लाभदायक हो और इस पौधे के लिए भी बहुत अच्छा हो। आप जब भी इसकी खेती करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उचित भूमि का चयन करना होगा ताकि अच्छी पैदावार हो। शिमला मिर्च की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, इसमें जिसमें कि जल निकासी का अच्छा प्रबंध हो, उसमें ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए, इसमें जल जमा होने से पौधे खराब होने का डर रहता है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच तकरीबन 6 से 6.5 होना चाहिए। इसके अलावा बालुई दोमट मिट्टी में भी शिमला मिर्च की खेती को किया जा सकता है, लेकिन तब जब मिट्टी में अधिक खाद व उसके पौधे का समय समय से सिंचाई का प्रबंधन अच्छे ढंग से किया गया हो। शिमला मिर्च की खेती के लिए हमें नर्म अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। शिमला मिर्च के फसल की अच्छी प्राप्ति हेतु, इसकी अच्छी वृद्धि हेतु कम से कम 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा माना जाता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्यादा पाला गिरने से या ज्यादा ठंड पड़ने से शिमला मिर्च को नुकसान पहुंच सकता है और पौधों पर फूल कम लगते हैं और इसके फल का आकार छोटा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगर हम उन्नत किस्में लगाना चाहें तो ज्यादातर उन्नत किस्में के नाम इस प्रकार से हैं जो हमारे झारखंड में ज्यादातर लगाया जाता है, जिसमें है आर्का गौरव, आर्का मोहनी, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, ऐश्वर्या, अलंकार, हरी रानी, पूसा दीप्ति या ग्रीन गोल्ड आदि उन्नत किस्में हैं शिमला मिर्च की जो आप लगा सकते हैं। और इन किस्मों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें खाद प्रबंधन को अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसमें ज्यादातर जैविक खाद जो है बहुत ही अच्छा होता है, जो सड़ी हुई गोबर से तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग घर पे भी तैयार कर सकते हैं। सड़ी गोबर या कुछ सड़े गले पत्ते, ये सब मिला करके जैविक खाद तैयार किया जाता है जो किसी भी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक होता है। शिमला मिर्च का की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय खेत में करीब 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देनी चाहिए। अगर आप ज्यादा लगा रहे हैं तो आप गोबर की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, बहुत ही बृहद अगर कर रहे हैं तो। और आप कम जगह पे अगर कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, तो आप उसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। उसके बाद पौधों की रोपाई का समय 60 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटाश को डाल सकते हैं। आप अपनी खेती के अनुसार भी लगा सकते हैं इसमें जो खाद है। 60 किलोग्राम नत्रजन को आधा आधा करके 2 बार में डाला जाता है, एक पौधों की रोपाई के समय और फिर दूसरा उसके 55 दिनों के बाद। अब हम देखते हैं कि बीज बोने के समय हम लोग को
بھی جب

0: चार करके लगाना चाहिए। जैसे कि शिमला मिर्च के बीज को साल में 3 बार बोया जा सकता है, पहले जून से जुलाई तक और द्वितीय है अगस्त से सितंबर और तीसरा है नवंबर से दिसंबर तक। शिमला मिर्च के बीजों की बुआई क्यारियों में करने से पहले उसे 2.5 ग्राम थायरम या बोस्टिन से उपचारित करके बोना चाहिए, जिससे कि बीज से पौधे अच्छे निकले। बीज बोने के समय प्रत्येक कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज को कम से कम उतनी दूरी रखनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर उसमें बोया जाता है और जब बीज की बुआई पूरी हो जाए तो उसके बाद उसमें गोबर की खाद और मिट्टी से अच्छे से ढककर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि पौधे को कब लगाना चाहिए। पहले हम लोगों ने देखा बीज को बोने का समय, अब इसे पौधे के रूप में भी लगा सकते हैं। उसकी विधि भी जानेंगे और उस विधि को किस तरह से लगाया जाए पौधे आपको बताने जा रहे हैं। शिमला मिर्च के बीज को बोने के बाद जब उसमें पौधा निकला है तो फिर उस पौधे को खेत में रोपा जाता है। पौधे को रोपने का समय जुलाई से अगस्त और सितंबर से अक्टूबर और दिसंबर से जनवरी तक होता है। लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा और 3-4 पत्तियों वाले पौधे को रोपने के प्रयोग में लाया जाता है। शिमला मिर्च के पौधे को शाम के समय रोपा जाता है क्योंकि इसे ज्यादा धूप लगने का चांस नहीं होता है, क्योंकि ये धूप से मुरझा भी सकता है, इसलिए इसे ज्यादातर शाम को लगाया जाता है। पौधों से पौधों की दूरी तकरीबन 60 से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। पौधे को रोपने से पहले उसके जड़ को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वोस्टिन को खोलकर उसमें डुबाकर आधा घंटा के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे मिट्टी में लगा दीजिए। अब हम देखते हैं कि सिंचाई किस तरह से होनी चाहिए। पौधे को रोपने के बाद फौरन ही खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। शिमला मिर्च की खेती में कम से कम सिंचाई या फिर जरूरत से ज्यादा सिंचाई कर देने से भी इसे हानि हो सकती है। गर्मी में 1 सप्ताह और ठंड में 10 से 15 दिनों के अंतराल में खेत की सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में अगर खेत में पानी जमने लगे तो पानी निकालने का प्रबंध हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए। इससे पानी जमने से क्या होता है कि पौधे खराब होने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि पानी सिंचाई करने का प्रबंध तो हम लोगों ने देख लिया है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि निराई गुड़ाई कैसी होनी चाहिए और कब से कब कितने दिनों बाद होनी चाहिए। तो पहली निराई गुड़ाई पौधे को रोपने के 25 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई कम से कम 45 दिन बाद करके खरपतवार को साफ कर देना चाहिए। पौधे को रोपने के ठीक 30 दिन बाद उस पर दोबारा मिट्टी चढ़ा दी जाती है ताकि पौधे मजबूत और गिरे नहीं, क्योंकि पौधे उस समय तक भी छोटे और पतले होते हैं। इन पौधों में भी रोग और कीट का प्रकोप होता है। कुछ कीट इस तरह से होते हैं कि पूरे पौधे को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें ज्यादातर नाम इस प्रकार हैं जो शिमला मिर्च को नुकसान पहुंचाते हैं। माहू है, थ्रिप्स है, सफेद मक्खी और मकड़ी है, जो ये पौधों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों से बचाव करने के लिए हमें 1 लीटर पानी में डाइमेथोएट या मेलाथियन का घोल तैयार करके हर 15 दिन के अंतराल कम से कम 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। अन्य रोग में इसमें है ज्यादातर इसका फूल झड़ना। इसके फूल झड़ने से फल नहीं बनते हैं, तो इस पौधे को बचाने के लिए हमें कुछ दवा का छिड़काव करना चाहिए। फोलोनिक्स नमक दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसे 1 लीटर पानी में घोल करके कम से कम 15 दिन के अंतराल में 2 बार इसका छिड़काव करना चाहिए। इसमें और भी रोग आते हैं जो भूभत्तीय रोग के नाम से है। यह रोग अधिकतर गर्मी में लगता है। इस रोग से पत्तियों का सफेद चूर्ण जैसे धब्बे पड़ जाते हैं और उसके बाद पत्तियां सूखी हो पीली होकर के सूखने लगती हैं। इसे बचाने के लिए 0.2% के घोल को हर 15 दिन के अंतराल में कम से कम 3 बार छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद है और एक रोग है पर्ण कुंचन। इस रोग के प्रकोप से पत्ते सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं और साथ ही इसके पत्ते हरे गहरे रंग से भूरे रंग के हो जाते हैं। इसे रोकथाम करने के हेतु बुआई से पूर्व लगभग 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान 3G को प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिला देना चाहिए। उसके बाद पौधे को रोपने के लगभग 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 ECG को 1 मिलीमीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव हर दिन हर 15 दिन के मध्यांतर में करते रहना चाहिए। जब फसल तैयार हो जाती है तो इस फसल की तुड़ाई का समय है रोपने से ठीक 60 से 70 दिनों बाद शिमला मिर्च के फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके फलों की तुड़ाई लगभग 100 से 120 दिनों तक चलती रहती है, क्योंकि ये अगर बृहद मात्रा में खेती की हुई रहती है तो ये मतलब कुछ दिनों के अंतराल में, जैसे अब अभी आप तोड़ते हैं तो और 1 सप्ताह बाद तोड़िएगा, फिर ऐसे ही फल मिलते रहेंगे, फल तैयार होते रहते हैं और वैसे ही आप धीरे धीरे उसको तोड़ते जाएंगे। अभी मैंने भी कुछ शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं। मैंने भी कृषि विभाग से जानकारी लेकर के कुछ जगहों पे शिमला मिर्च की खेती की हुई है। और किसान भाई बहन, आप भी हमसे जानकारी लेकर के आप भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी जो मैंने फसल लगाए हैं उससे हमें थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये फसल बाजार में नहीं आए रहते हैं तो उस समय इसका दाम जो है अच्छे दामों मिलते हैं, अच्छे दाम में बिकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अभी आप लोगों को हमसे जो जानकारी मिली है उससे सुन करके जान करके आप भी इस खेती में आप भी आना चाहेंगे और आप अपना और अपना आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाएंगे, यही उम्मीद है आपसे। और आप लोग जान भी रहे हैं कि इस फसल का जो बाजार भाव कम से कम 40 से 120 रुपए प्रति किलो बिकता है, तो आप ज्यादा नहीं भी तो थोड़े बहुत में आप खेती कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ भूमि भी है या थोड़े उससे कम भी है, तो आप उन्नत खेती करके कम से कम 1 वर्ष में 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए उतना साल में नहीं भी लाभ होता है तो कम से कम आपका 50 से 1 लाख तक आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं पिंकी ऐसा आप लोगों से विदा लेती हूँ। जोहार।
1: तो किसान भाई बहनों, इस जानकारी के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की मंजूरी दी है, जिस पर 2009 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। धनबाद पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण और असामाजिक तत्वों से निपटने का पूर्वाभ्यास किया। सुरक्षा के लिए 400 होमगार्ड धनबाद पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। चतरा में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। डीएसपी सन्निवर्धन ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए यह कदम उठाया गया है। विश्व मानक दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। इस वर्ष की थीम सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा रही, जिसके तहत सतत विकास, गुणवत्ता और सुरक्षा में मानकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। लोहरदगा समाहरणालय में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी आवासीय विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच करने और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत छात्रों की आभा आईडी बनाने का निर्देश दिया। राज्य के 4 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में गर्मी और उमस बनी रहेगी। आज कोडरमा में सर्वाधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में सबसे कम 16.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिन पास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
5: आई मतान ताई की नबू छोटे जगर को इला मियन अरफा आंधरा दुरंत ब्रश के लेन वहाँ दुरंत नकिंग पुलमती फाटपिंग हुए अंडो अकिंग जुड़ी को।

श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा, ये आकाशवाणी का चाई बसा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको कुछ ही पलों में सुनवाते हैं कार्यक्रम मनोरमा।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहनों, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने खान पान का भी विशेष ध्यान देना होता है। खान पान की अनदेखी से शरीर को परेशानी का सामना करना होता है। हमारे शरीर की छोटी छोटी परेशानियाँ भी शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ बीमारियों से दूर रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण देना भी अहम है। संतुलित आहार में अनाज, दालें, सब्जियां, फल, अच्छे फैट, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडे या मछली आदि शामिल होने चाहिए। हर भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर बनाने वाले और रोगों से बचाव में मदद करने वाले खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें। बहनों, यदि हम संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, और हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को रोज़ाना भोजन में शामिल करें जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। इससे हम स्वस्थ एवं निरोग बने रहेंगे। तो उम्मीद है बहनों, आप सभी इन बातों को अमल करेंगे और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का सेवन जरूर करेंगे। बहनों, चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिन पास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366 97, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिन पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जन
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
5: बहनों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम मनोरंजन करते हैं इस गीत से।

0: बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे 1942 ए लव स्टोरी फिल्म के इस गीत से, जिसे स्वर दिया था कुमार सानू ने। इस गीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये भेंट वार्ता। बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उमा रानी दोराई गुरु जी से, और आज हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे माहवारी के बारे में और इस दौरान हमें अपनी देखभाल कैसी करनी चाहिए। तो उमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
1: जोहार
0: उमा जी, आप अपना परिचय, पूरा परिचय हमारी बहनों को दीजिए।
1: आप सभी श्रोतागणों को मेरा जोहार। मेरा नाम उमा रानी दुरैब्रू है। मैं GNM NCD के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर चैबासा में कार्यरत हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो उमा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि माहवारी क्या है?
1: माहवारी या मासिक धर्म या पीरियड के नाम से जाना जाता है
0: जी,
1: या लड़कियों और महिलाओं के शरीर में होने वाली एक स्वाभाविक और सामान्य जैविक प्रक्रिया है, या सामान्यतः किशोर अवस्था यानी कि 10 से 12 साल में शुरू होती है और प्रजनन काल 45 से 55 तक रहता है
0: जी। ये तो ये माहवारी क्यों होता है और ये लड़कियों में ही क्यों होता है?
1: ये क्योंकि माहवारी जो है महिलाओं के प्रजनन अंग गर्भाशय से संबंधित है, इसीलिए ये महिलाओं और लड़कियों में ही होता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये लड़कियों में होता है तो, और ये प्रत्येक महीने में आता है, जैसा सभी कोई इसको अनुभव करती होंगी। तो जैसे प्रत्येक महीने महिलाओं के शरीर में प्राकृतिक रूप से प्रजनन या गर्भधारण के लिए गर्भाशय में ब्लड और टिश्यू के द्वारा एक परत तैयार होता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब गर्भधारण होता है तो माहवारी रुक जाती है या तब तक रुका रहता है जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। और यदि गर्भधारण नहीं होता है तो माहवारी आ जाती है और यह प्रत्येक महीने निरंतर रहता है।
0: तो ये प्रत्येक महीने निरंतर रहता है, जैसे आप अभी आपने कहा, ये कितने दिनों के अंतराल में होता है? जैसे इस महीने अगर हुआ तो नेक्स्ट मंथ वो सेम डेट में होगा या फिर थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है?
1: जी जी, ये प्रत्येक महिलाओं में अलग अलग, मैंने अलग अलग ड्यूरेशन में या फिर अलग अलग तारीख में भी हो सकता है और होता ही है। जैसे कि कुछ महिलाओं में 28 दिन के बाद आता है और कुछ महिलाओं में 35 दिन के बाद आता है। अच्छा। ये नॉर्मल है।

0: करना, बाल धोना ठीक है।
1: अच्छा, तो जैसा कि हम पुराने ज़माने में से सुनते आ रहे हैं दादी नानियों से, कि वो कहते हैं कि इस दौरान अचार या खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो क्या ये सही है?
0: नहीं नहीं ये भी सही नहीं है। सामान्य मात्रा में इन्हें खाने से मैंने कोई वैज्ञानिक नुकसान अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है।
1: तो और इस दौरान हम व्यायाम कर सकते हैं?
0: हल्का व्यायाम कर सकती है और सामान्य गतिविधियां भी कर सकती है, यदि उसका शरीर सहज महसूस कर रहा है तो वो हल्का फुल्का व्यायाम कर सकती है।
1: अच्छा, और हमने ये भी सुना है उमा जी कि इस महामारी के दौरान लड़कियों को अलग अलग रहना चाहिए, और क्या ये महामारी का खून गंदा या विषैला होता है क्या?
0: ये जरूरी नहीं है, ये सामान्य दैनिक गतिविधियों में भाग ले सकती है और यह शरीर से निकलने वाला ये सामान्य मासिक ब्लड होता है, ये कोई विषैला खून नहीं होता है।
1: तो जैसे कि नानियाँ दादियाँ लोग पहले कहती थीं कि कहते आ रही हैं, अभी भी कहीं कहीं पे लोग इतने जागरूक नहीं हैं इस महामारी के संबंध में, कि वो लोग अभी भी कहते हैं कि जैसा कि किन्हीं किशोर या महिला को अगर हो रहा है तो उनसे कहा जाता है कि थोड़ा सा आप अलग थलग रहो, तो ये गलत धारणा है। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं या फिर किशोरियां हैं महामारी पर बात करना बहुत शर्म महसूस करती है, ये शर्म की बात तो है नहीं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, इसके बारे में खुलकर और सही जानकारी के साथ बात करना स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे होने वाली नुकसान या कुछ तकलीफ वो अगर वो शर्म महसूस कर रही है, सहज महसूस नहीं कर पा रही है, तो अपनी बड़ी बहन, अपनी माँ, अपनी चाची या जिससे भी सहज महसूस कर सकती करती है, जैसे अपने क्लास की शिक्षिका हो सकती है, अभी तो जैसे गाँव में सहिया दीदी भी उपलब्ध है, तो अपनी ये बातें सहिया दीदी या स्वास्थ्य कर्मी वो किसी हर किसी से बात कर सकते।
1: इस विषय पर हमें खुलकर बातें करनी होंगी, तभी हम इससे जो भी समस्या अगर उत्पन्न हो रही है या इसके बारे में अगर सही जानकारी नहीं है तो वो जानकारी हम ले सकते हैं। जैसे अभी तो प्रत्येक गांव में सहिया दीदी हैं, जैसे अभी आपने कहा, तो उनसे भी आप बेझिझक आप बात कर सकते हैं और इस विषय में पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। उमा जी, ये आपने महामारी के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, और अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान लड़कियों और महिलाओं को किन बातों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है महामारी के दौरान?
0: जी, ये लड़कियों और महिलाओं को विशेषकर महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जो महामारी के दौरान जो इस्तेमाल होता है, सैनिटरी पैड या मासिक धर्म के उत्पाद और भी बाजार में उपलब्ध है, या और भी कोई भी प्रसाधन जो भी इस्तेमाल करती है, वो समय समय पर बदलना चाहिए। और जो जनन अंग हैं उनको साफ पानी से साफ रखें और क्षेत्र को सूखा रखें।
1: अगर हम साफ सफाई पर अगर हम विशेष ध्यान ना दें इस दौरान, तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
0: जी, जैसे अगर सैनिटरी पैड जो है अगर समय पर नहीं बदलेंगी तो जनन अंग में सूजन आ सकता है, वहाँ खुजली आ सकती है, तो वो एक इन्फेक्शन बन सकता है। इन्फेक्शन वो जननांग से होते हुए पूरे शरीर में फैल सकता है, तो इसीलिए वो साफ सुथरा सैनिटरी पैड को समय समय पर बदल करके अपना जननांगों को साफ सुथरा रख सकती है।
1: साबुन वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं?
0: जी जी, अगर उन्हें कोई एलर्जी नहीं है साबुन से तो साबुन का इस्तेमाल बेशक वो कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये सैनिटरी पैड जो है वो महिलाएं कितने घंटों के अंतराल पर चेंज कर सकती हैं या चेंज करना चाहिए?
0: जैसा कि देखिए है ना, हर एक महिलाओं में अलग मात्रा में रक्तस्राव होता है, तो जैसा ही पैड गीला महसूस करती हैं तो वो बदल सकती हैं, कम से कम दिन में 3 बार बदले वो।
1: अगर इस दौरान अगर सही से महिलाएं या किशोरियां अगर अपनी देखभाल नहीं करती हैं तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं?
0: हाँ, जैसा कि ये मैंने शुरू में ही बताया, ये जनन अंगों से संबंधित है, तो ये गर्भाशय से होकर आ रहा है, तो उसका जो इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो गर्भाशय और उससे संबंधित जन और भी जितने अंग हैं, जैसे गर्भाशय हुआ और उसके आसपास का जो अंग सब है, सब इन्फेक्टेड हो सकता है।
1: अच्छा, तो ये साफ सफाई बहुत जरूरी है इस दौरान, और समय समय पर पैड चेंज करना भी बहुत जरूरी है। उमा जी, यदि महावारी

0: के दौरान किसी किसी को बहुत तेज दर्द होता है और कभी कभी तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: देखिए, हर एक महिलाओं को तो अलग अलग रक्तस्राव होता है। यदि किसी लड़की या महिला को बहुत तेज दर्द होता है या अत्यधिक रक्तस्राव होता है या चक्कर आते हैं या बार बार अनियमित महावारी होती है, अगर ऐसी समस्या बार बार हो रही है तो डॉक्टर की सलाह ले सकती है।
0: जी बिल्कुल, अगर वो अगर सही समय पर नहीं जाती हैं तो समस्या बढ़ सकती है।
1: हाँ, जो समस्या है और जटिल बन सकती है। इस दौरान महिलाओं को अपने खान पान पर भी बहुत माने ध्यान देना चाहिए। जैसे अपने भोजन में हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही और आयरन युक्त खाना वो अपना खाना में शामिल कर सकती है। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिएंगी और शरीर को हाइड्रेट रहेंगी
0: जी,
1: आराम भी करेंगी, नींद पर्याप्त लेंगी और हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि भी आराम देने में मदद कर सकती है।
0: जी बहुत अच्छा, तो इस दौरान संतुलित भोजन भी बहुत जरूरी है, तो सभी महिलाओं या किशोरियों को अपने रोजाना के खाने में हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ को जरूर शामिल करना चाहिए। तो उमा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी महावारी के बारे में भी और इस दौरान हमें अपनी देखभाल कैसी करनी चाहिए इस विषय पर भी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने अपना कीमती समय देते हुए हमारे स्टूडियो में आप आए और अपने अनुभव को भी साझा किया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी बहनों तक पहुंचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी, आपको भी कि आपने इस मंच पर मुझे अपना अनुभव और जानकारी साझा करने का मौका दिया। इसका फ़ायदा ज़रूर जो किशोरावस्था की बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। बहनों, अभी आप भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे महावारी के दौरान हमें किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इस विषय पर उमा रानी दोरैबुरु जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी होंगी तो आप उनके कहे बातों को आप अमल करें और स्वस्थ रहें।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिन पास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिन पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
5: बहनों, इसी संदेश के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
1: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
6: पिछले हफ्ते ही तो तुमने NSB कराई है।
1: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
7: NSB कराने।
1: पुरुष नसबंदी यानी NSB की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: बचाएंगे नहीं,
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी रेलवे बोनस को मंजूरी। दिव्यांगजन पेंशन का दायरा बढ़ा। विकलांगता मानदंड 80 से घटाकर 40% किया गया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी पटेल वरिष्ठ नेताओं के साथ की अहम बैठक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामगढ़ के एकल विद्यालयों का किया दौरा। ग्रामीणों से संवाद कर बच्चों को बाल मजदूरी अपील ने सुरक्षा मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन। 21 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी। और राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। रांची में आज खुले कई पूजा पंडालों के पट। धनबाद में हुआ मॉक ड्रिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की मंजूरी दी है, जिस पर 2,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिव्यांगजन पेंशन के लिए विकलांगता का मानदंड 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है, जिससे 3,20,00,000 लाभार्थियों को मदद मिलेगी। साथ ही IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी गई है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के बाद श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए राम मंदिर निर्माण कार्यों की सराहना की।
2: रोड के जाल जिसको कह सकते बिछाया गया, फोर लेन सिक्स लेन एट लेन योजना को कहीं पहुंचाया तो किसी ने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव और घरों तक बिजली पहुंचा। तो ऐसे ही असंख्य काम उन्होंने किया। गरीबों को आना, गरीबों को घर, गरीबों को गैस कनेक्शन, गरीबों काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ के राजपेड़ा, ईटापुरी और बदायूं का उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के लिए शिक्षकों के समर्पण की सराहना की और बच्चों को राष्ट्रपति के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। राज्यपाल ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने और बाल मजदूरी से दूर रखने की अपील की। रांची में IMA झारखंड समेत डॉक्टरों के 10 प्रमुख चिकित्सा संगठनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा की मांग को लेकर संयुक्त आंदोलन शुरू किया है। डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और आयुष्मान भारत योजना के बकाया भुगतान की मांग की है।
3: आज हमारे बच्चे बड़े होकर जब अपना क्लिनिक खोलने के लिए जाएंगे, अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में इतनी बुरी बुरी चीजें हैं तो आप खोल ही नहीं पाओगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे डॉक्टर्स को यहीं रहने दीजिए, हमारे डॉक्टर्स को राज छोड़ने पे मजबूर मत कीजिए। आज के दिन में आयुष्मान पूरे भारत में बहुत अच्छा कर रहा है। अब आयुष्मान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा बीच बीच में आते रहते हैं, उसको परमानेंट फिक्स करने के लिए कमेटी बनाए।
0: संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 21 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 22 अक्टूबर से राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार 4 नए लेबर कोड जैसी ऐतिहासिक और दूरगामी परियोजनाओं के माध्यम से श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों को सुरक्षित किया गया है।

0: श्रमिकों और नियोक्ताओं के हित में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 नए लेबर कोड तैयार किए गए हैं। इन नए सुधारों से सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन मिलना सुनिश्चित हुआ है। साथ ही भत्तों को अधिकतम 50% तक सीमित करने से कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का हिस्सा भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक पहल को देश का सबसे बड़ा श्रमिक सुधार बताया है।
1: हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे।
0: प्रधानमंत्री के श्रमेव जयते के संकल्प का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। धनबाद जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने लगा है। खासकर निजी और असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस बदलाव से बेहद उत्साहित हैं।
2: मेरा नाम आशीष सिंह है। कई चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो पॉइंट आउट की गई हैं, जिनका सीधे तौर पर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जैसे ग्रेच्युटी की मिल रही है कि जो पहले ही 5 साल में होता था, अभी कर्मचारी 1 साल में ही ग्रेच्युटी उनको मिलने लगेगा।
3: मेरा नाम भरत है। केंद्र सरकार ने पुराने श्रम कानूनों को कंपाइल करके 4 नए लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए हैं। नए लेबर कोड के तहत सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को न्यूनतम वेतन, समान वेतन, PF और SI का लाभ दिए जाने से ऐसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
0: धनबाद की कोल इंडिया अनुषंगी इकाई BCCL जैसे बड़े संस्थानों में इसे कड़ाई से लागू किया जा रहा है, ताकि किसी भी मजदूर के हितों की अनदेखी ना हो। कुल मिलाकर पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर लाए गए इन नए लेबर कोड्स ने न सिर्फ काम की परिस्थितियों को सुधारा है, बल्कि देश के करोड़ों श्रम वीरों के जीवन को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए धनबाद से दीपक कुमार पांडे के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
4: राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। राजधानी रांची में आज चतुर्थी पर कई पूजा पंडालों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उधर धनबाद पुलिस लाइन में सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में मॉक ड्रिल कर भीड़ नियंत्रण का पूर्वाभ्यास किया गया। सिटी SP ने बताया कि सुरक्षा के लिए जिले में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।
5: मेजर पर्व त्यौहार वगैरह के पहले हम लोग इस टाइप का मॉकड्रिल वगैरह करते हैं, ताकि कोई भी अनहोनी घटना या कोई भी अप्रिय घटना होने से रोकी जा सके। जिला पुलिस हर तरीके से तैयार है। जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं, खुद स्वयं रोड पे निकल के जहां जहां

0: या पंडाल वगैरह उसका स्वयं निरीक्षण किया गया है। तो हम लोग हर समय क्या होता है एकदम तत्परता के साथ यहाँ पे सुदृढ़ रूप से जुटे हुए हैं ताकि जो दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है पर्व है वो बिल्कुल पीसफुल ढंग से और बिल्कुल शांति के साथ निकाला जा सके।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य के चार जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में गर्मी और उमस बनी रहेगी। आज कोडरमा में सर्वाधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में सबसे कम 16.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी रेलवे बोनस को मंजूरी। दिव्यांगजन पेंशन का दायरा बढ़ा। विकलांगता मानदंड 80 से घटाकर 40% किया गया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश पटेल वरिष्ठ नेताओं के साथ की अहम बैठक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामगढ़ के एकल विद्यालयों का किया दौरा। ग्रामीणों से संवाद कर बच्चों को बाल मजदूरी से दूर रखने की अपील की। रांची में डॉक्टरों के 10 प्रमुख चिकित्सा संगठनों ने सुरक्षा मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन। 21 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी। और राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। रांची में आज खुले कई पूजा पंडालों के पट। धनबाद में हुआ मॉक ड्रिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
3: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
4: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
3: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
4: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
3: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
3: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
4: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
3: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
4: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
3: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:11 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम जिले में आजकल। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। नवरात्र के अवसर पर हर तरफ भक्ति की धारा बह रही है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र से आए पुनेरी ढोल के द्वारा गजब का समा बांधा गया। नवरात्र के अवसर पर रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है, जहां दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में नवाहन परायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। संध्या समय चित्रकूट से आए संतों के द्वारा प्रवचन भी किया जा रहा है। लोग अपने घरों में कलश स्थापना कर देवी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। लोहरदगा में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोचिकित्सक ने बताया कि बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन होने लगे तो परिजनों को चिकित्सकों से अवश्य मिलना चाहिए। मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव सहाय ने कहा कि
2: फिजिकल हेल्थ के बारे में लोग बात किया करते कि फिट होना जरूरी है। जो इंसान फिट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बीमारी है, लेकिन फिर भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करके फिट रहता है। जैसे मेंटल हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। आपका स्ट्रेस होने पे कैसे हैंडल करना है वो चीज़ अच्छा होना चाहिए। आपको

0: कोई प्रॉब्लम होने पे कैसे उसको हैंडल करना, जो रिजिलियंस हम लोग बात करते हैं, वो चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ इज दैट, आपका फोकस रहना चाहिए कि आपका मेंटली हेल्दी रहिए, आप फिट रहिए मेंटली।
1: लोहरदगा जिला में शहीद SP अजय कुमार सिंह की याद में अजय उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन हुआ। मौके पर लोगों ने शहीद SP की कृतियों की चर्चा की और कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। इस मौके पर लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: जिस काम के लिए जो नक्सलवाद के प्रति उन्होंने लड़ते हुए अपना प्राणों को न्यौछावर किया, आज आप लोग देख रहे हैं कि 26 साल बाद जिस चीज की, जिस लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसके 26 साल बाद न केवल हम लोगों का लोहरदगा जिला बल्कि पूरा राज्य और पूरा देश आज नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। और इसके लिए मैं तमाम जो अजय सर ने जिस संकल्प को लिया था, उस लड़ाई में लड़ते हुए जितने भी लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी है, जितने लोगों ने संघर्ष किया है, मैं उनको इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ।
1: लोहरदगा जिला में महात्मा गांधी फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में 3 दिवसीय इनामी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद सुखदेव भगत मौजूद थे। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
3: बदलो यारो, आंसुओं को पसीने में बदलो यारो, मेहनत से हर हथेर संवरती है, या उतना ही सच है यारो जितना सूरज हर रोज निकलता है। और हम इतनी मेहनत से करेले कभी पीछे नहीं हटा। एक बात के जरूर कहे जाब, लेकिन जो भी समस्या के समाधान है, फोन नंबर भी हो सकेला प्रतिनिधि है, यहाँ जितना लोग सबको जान पहचान, अभी रोड के बारे होलक हम वीडियो साहब के बोली, आप प्रतिनिधि आप एक आवेदन बना के भेजिए, चाहे DFT फंड होता है या कहीं से भी उपाय होता है, हम लोग के प्रयास करेंगे कि आगे काम हो।
1: लोहरदगा जिला में SIR का काम जारी है। विभिन्न मतदान केंद्रों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
4: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। इस समय संध्या के 7:17 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज दुर्गा माता की चौथे रूप की पूजा की जा रही है, कुष्मांडा माँ की। तो इस अवसर पर आप सबको हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और माता को ढेर सारी प्रणाम। तो शुरू करते हैं माता के इस भक्ति गीत से। आपको सुनवा रहे हैं आशा फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, चंचल और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं डोंगरगांव जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीये, रेलवे रोड गजटुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन, छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल और ऋतिक। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। माता का दिन चल रहा है, यानी कि नवरात्रि चल रही है, और उनकी आराधना करते हुए हमने आपको पहला गीत सुनाया आशा फिल्म से। तो चलिए अब गीतों का सिलसिला हम शुरू करते हैं आगे, और आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, अरशद भोपाली के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, माहुलडिया सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदिनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु तनु, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधु, जयश्री देवी बेबी और मधु लकड़ा, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। चलिए इन सब के फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म रोटी का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते थे कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयसा खान, हृदय खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुश्तापा खान, राउत भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, चेतिंग मीरक और मीका बीरक। चलिए इन सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है साजन। एसपी बल सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप इस गीत को सुनिए। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म साजन की बाहों में का ये गीत, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। समीर के बोल थे और संगीत था नदीम श्रावण का। और इस गीत को सुनना चाहते थे दुर्गा इसेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, बड़ा नेमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। चलिए इन सब के बाद आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सड़क। अनुराधा पौडवाल और कुमार

किसानों की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं तुरी टोला चाईबासा से पुष्पा देवी, परमवीर सोनू, हरी खुशी उसार और खुशी, लक्षणपुर से जीवनलाल रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, भटगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू और नीलिमा साहू, पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, सुहानी महली, हर्षमणि महली, नंदिनी महली, संजय सोरेन, साजीव सोरेन, पार्वती महली, पातोर बंकीरा, डोली बंकीरा। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सड़क का ये गीत अनुराधा पडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। चलिए अब कुछ संदेश सुनते हैं।
1: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, इन संदेशों के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद भी यही संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडिल ग्राम हारोडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो, मनोरमा और दीन बंधु महतो। छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल और ऋतिक। कुचाई ग्राम इचा हाथु से गोलाराम लोवादा, लुद्री सोमनाथ, पूर्णिमा लालमुनी, बिंजना लोवादा परिवार। ग्राम लोसोदुकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमन महतो और परिवार के सभी सदस्य। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये प्यारा सा नगमा।

जोकर। श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है रोजा। मिनमिनी की आवाज है, ए आर रहमान का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं खरसवा गांव नारायणपुर से कैलाश बाबा, आश्रम से खेत्र मोहन साहू, नायडू साहू, बाबा कैलाशी मुखिया, बड़ामदस पंचायत से प्रधान मारी सोए, नगर मेहरनगर उमेरखंड से अभिजीत ग्वांडकर राही, सरिता ग्वांडकर, सिद्धांत ग्वांडकर बंटी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश ग्वांडकर, वैशाली ग्वांडकर, कुमारी ध्वनि ग्वांडकर उपरी, बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, किरण, रोशनी, मुस्कान, बिट्टू और रिजवाना। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोजा का ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंथा। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से ये गीत। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत पैनेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हासे शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, कुचाई इचाहतु से गोलाराम लोवादा, लुदरी लोवादा, सूती लोवादा, सोमनाथ लोवादा, पूर्णिमा लोवादा, लालमुनि लोवादा, बिंजना लोवादा, ग्राम गैलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अनु, बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा, बड़ा बंबू सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती कुमारी, निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक और श्यामदेव नायक। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से ये नगमा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम रजनीगंधा में। मैं हूं छवि, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको हम सुनवाते हैं फिल्म का नाम है रॉय। मीत प्रोस और अनजान की आवाजें हैं, कनिका कपूर के बोल हैं। चलिए इस गीत को सुनना चाहते हैं जलाल राजनाथ गांव से, यासुब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिपा तिवारी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगे से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है फ्रंकीला। आशा भोसले और आदित्य नारायण की आवाजें हैं, एआर रहमान का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। चांडिल ग्राम हारूडेर से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दीन बंधु महतो। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और मोहित्रा नारंग। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है रूल्स, सोनू निगम की आवाज़ है। इस गीत को सुनना चाहते हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हेमांती मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, चाईबासा से संजय बिरवा, डोमचंद बिरवा, पिंकी पाड़िया, उर्मिला मुर्मू और जदु लोहार, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमान

खातून अंसारी जेल रोड दिल्ली से, लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं रूल्स फिल्म का ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं सलामी फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम शावल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सवाशेरे, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुतीम डोम, कुमारी वाली डोम, कुमारी डब्रू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा, रेशमा थापा और आदिपा थापा, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा गांव लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, ग्राम उघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो और समस्त महतो परिवार। इन सब की फरमाइश पर हम सुनवाते हैं फिल्म सलामी का ये कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीकंधा अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
1: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, समय-समय इसको सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस
0: इनका बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

0: जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है, और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाज कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरै राजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुश मिजाज हैं।
2: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
5: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
0: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिली सेकेंड से स्वर्ण में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Velkumar wins silver medal in men's 1,000 meter sprint at World Skating Games in Paraguay, and in men's cricket, fourth T20 international between India and West Indies underway in Hyderabad. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. The approval also includes renaming of the scheme and its sub-schemes, along with revisions to the eligibility, criteria, coverage and rates of assistance for disability pension beneficiaries. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. He said the benchmark disability criterion for eligibility will be reduced from 80% to 40%.
7: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
8: 3 crore 20 lakh ho jayegi.
6: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given the nod to the strategic restructuring of IDBI Bank.
9: IDBI key strategic restructuring.
7: A decision has been taken to undertake the strategic restructuring of IDBI Bank. As India continues to grow rapidly, there is a significant need for growth capital. We need more institutions that can provide growth capital and support micro, small and medium enterprises. Therefore, a strategic partner has been selected for IDBI Bank. With the support of this strategic partner, fresh capital will be infused into the bank. This decision has paved the way for what could be the largest FDI in India's financial service sector.
9: Largest FDI aane ka madhyam is nirnay se ban.
6: Mr. Vaishnav said the cabinet has also cleared a productivity-linked bonus of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance.
10: The cabinet today approved a productivity-linked bonus equivalent to 78 days' wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2,009 crore rupees.
8: 2,009 crore rupees ka total bonus hai.
6: Prime Minister Narendra Modi today reaffirmed India's commitment to delivering tangible benefits to the people of both countries. Mr. Modi met Canadian Foreign Minister Anita Anand in New Delhi and reviewed ongoing efforts to strengthen bilateral relations. During the meeting, the two sides discussed enhancing cooperation in key areas, including trade, technology, security, energy, education, and people-to-people exchanges. The Prime Minister emphasized the need to sustain the momentum in bilateral engagement and translate it into concrete outcomes, including the early conclusion of negotiations on a comprehensive economic partnership agreement. Earlier in the day, the Canadian Foreign Minister held talks with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Singh in the national capital. India has strongly condemned the recent attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia. Briefing the media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attack on the Aramco headquarters, which took place in the West Asian country yesterday. He described such acts as totally unacceptable and called for an immediate end to them.
1: There have been a string of attacks in Saudi Arabia, and we have condemned those attacks. Yesterday also there was attack on Aramco headquarters. We condemn all such attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia. We feel that such attacks need to cease immediately. They are totally unacceptable. We stand in solidarity with the people and government of Saudi Arabia in defense of their sovereignty, and we hope there is return to peace and normalcy in the region soon.
6: Authorities' instructions: stay indoors in case of aerial attack and refrain from circulating videos or news related to ongoing events in view of the current situation in Saudi Arabia. The central government has notified amendments to the India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement, introducing a principal purpose test to prevent the misuse of treaty provisions for tax avoidance and evasion under the revised agreement. Tax treaty benefits may be denied if obtaining such benefits is found to be one of the principal purposes of a transaction or arrangement. This is Akashvani giving you the news.
11: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
6: Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has constituted a committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures for addressing their concerns. Former member of Niti Aayog, Professor Ramesh Chand, will chair the panel. The constitution of the committee follows the decisions taken during a meeting of representatives of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra with the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. We have a report.
12: The committee will examine the demand for an increase in remunerative returns to sugarcane farmers, taking into account cultivation cost and other relevant factors. It will also examine the demand for revision of the ex-mill minimum selling price of sugar in the context of sugar production costs, market realizations, and the financial viability of sugar mills. Other key areas of examination will include existing mechanisms for testing and reporting sugar recovery and prevailing sugarcane weight mill practices at sugar mills. With Anand Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi has said India's civilizational journey has been shaped by centuries of cultural exchange and the sharing of knowledge across borders. Mr. Modi made the remarks in a written message delivered at the inaugural session of the three-day international conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi today. The Prime Minister's message was read out by Culture Secretary Vivek Agarwal at the conference. Mr. Modi highlighted the role of ancient centers of learning such as Nalanda in promoting the exchange of knowledge between India and other parts of the world. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like Pradhan Mantri Sangrahale.
13: Pradhan Mantri Sangrahale, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in 2022, highlights the contributions of all the Prime Ministers to the nation's development. The museum showcases how Indian democracy has provided opportunities for leaders from every section of society to contribute to nation building. Spread across two buildings, the modern digital museum offers visitors an insight into India's political history, democratic traditions, and journey of development. The Sangrahale features a light and sound show titled Viranganaon Ki Mahagatha, which narrates the inspiring stories of valiant women warriors who fought to uphold the nation's pride. Inaugurating the Pradhan Mantri Sangrahale, Prime Minister Narendra Modi described the museum as a living symbol of the shared heritage and collective contributions of all governments.
3: This, a jis un-

0: कवरेज 92% तक पहुंच गई है, जबकि आलमी सतह पर यह कवरेज 78% है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: भारत में टीबी के केसेस में कमी से मुल्क भर में टीबी की रोकथाम और कंट्रोल से मुतालिक पहलुओं को मुस्तहकम करने के लिए अवामी सेहत से मुतालिक मुसलसल अकदामात मजबूत अवामी शिरकत और अहदबस्तगी की अक्कासी होती है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 28 करोड़ से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा अफराद टीबी की रोकथाम से मुतालिक इलाज हासिल कर चुके हैं और 5,70,000 नए निक्षय मित्राज इस पहल से जुड़े हैं। टीबी को जड़ से खत्म करने से मुतालिक कौमी प्रोग्राम के तहत सेहत के तमाम अवामी मराकज और निजी मराकज पर टीबी की मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज से मुतालिक खिदमात फराहम की जाती है। नई दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर दिया है कि भारत और आसियान के दरमियान एक पुरमन मुस्तहकम और आजाद भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक वाज़ह मफादात मुश्तरक हैं। जनाब सिंह आज नई दिल्ली में आसियान इंडिया दिफाई थिंक टैंक फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के भारत बहरुल काहिल विजन में मरकजी हैसियत रखता है और भारत की मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की पॉलिसी जनूब मशरकी एशिया के साथ मिलकर काम करने से मुतालिक एक तवील मुद्दती अहद है। फोरम के लिए से निमटने, साइबर खतरात और फरोख पाती टेक्नोलॉजीज पर मरकूज एक मुश्तरका भारत आसियान रिसर्च एजेंडा वजा करने की तजवीज पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में मुनक्किद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर तमगों की फेरिस्त में चौथे मकाम पर है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पराग्वे के आसनसियो शहर में जारी आलमी स्केटिंग मुकाबलों के मर्दों के 1000 मीटर स्प्रिंट जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। तमिलनाडु के स्केटर बहुत कम फर्क से सोने का तमगा जीतने से चूक गए और दूसरे मकाम पर रहे। 1000 मीटर स्प्रिंट मुकाबले में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मुकर्ररा दूरी 1:21.922 सेकंड में तय की। सोने का तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ी और आनंद कुमार के दरमियान वक्त का फर्क सिर्फ 4 मिलीसेकंड रहा। मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में खेले जा रहे चौथे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत की जीत के लिए 248 रन का निशाना रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 247 रन बनाए। वेस्टइंडीज के कप्तान ने 102 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 4 ओवर्स में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। काबिना ने समाजी मदद से मुतालिक कौमी प्रोग्राम को मजीद 5 बरस जारी रखने को मंजूरी दी है। उसने माजूरी पेंशन के मुस्तफिदीन के लिए अहलियत की शराइत और इमदाद की शरहों में भी नजरसानी की है। हुकूमत ने IDBI बैंक की अहम तंजीमें 9 और रेलवे मुलाजिमीन के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ कलीदी शराकतदारी के भारत के अजम का इयादा किया है। दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई और सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत ने सऊदी अरब में सिविल बुनियादी ढांचे पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। उसने इन्हें फौरन रोके जाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र ने 305 ताल्लुकाओं को कहत से मुतासिरा करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा टी20 बैन अल अक्वामी मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
3: So I'll read the message of Honorable Prime Minister. I'm pleased to learn that the Ministry of Culture, through the National Center for the Arts, is organizing an international conference in New Delhi on the theme Bharat's Culture Connections Across the Globe. I warmly welcome the scholars, researchers, diplomats, and other distinguished participants from India and abroad who are participating in this important conference. For centuries, India's civilizational journey has been a story of cultural exchange. Centers of learning, such as Nalanda, strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambor Pray Kuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema, and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: Sachiv ne Brihattar Bharat ke bare mein bataya.
3: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता के दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है। इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है। तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं। तो भारत की बड़ी विशेष के साथ संवाद किया है और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं। आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है
1: जी।
2: तो समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे, दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे बल्कि आपसी सिद्धि और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के मिशन है।
1: पराशर जी, अगर आपसे मैं पूछूं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं। तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
4: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है
1: जी।
4: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं। विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से जो मुझे लगता है कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी।
4: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थी वो चली गई थी, कलाकृतियां थी, पांडुलिपियां थी, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी थाती, पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है
1: जी।
4: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनीतिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है, ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं
1: जी। वाधवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो, या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
2: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस उदाहरण है, और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं, और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे
1: जी।
2: हम देखें तो इसका सांस्कृत मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बृहत्तर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा भारत का विश्वास है। और संस्कृत की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां भारत की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए, और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और भारतीय परंपरा में जो वैष्णोदेव कुटुंबों का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है, तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहे तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
2: जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है, और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य नाटक और छाया पुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं, इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर, परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती हैं। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था, और मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया और कई देशों को बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न देशों में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन के केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फायान और ह्वेनसांग जैसे यात्री भारत आए, उन्होंने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया, और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया, और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था, तो इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है
1: जी।
2: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है
1: जी। पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है, तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
4: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रचार। लोग विदेशी
5: जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दोनों देशों में ऐसे में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा बृहत्तर भारत के जरिए अन्य समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहत्तर भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक दैशिक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है,

0: सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा, या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें, या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
1: बेहतर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। कभी विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में, और हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे, और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
0: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है, और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है। तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है, या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे, ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है, और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी, और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है, तो ये भारत सरकार की बृहत्तर भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य है उन्हें पहले समझ लेते हैं।
0: जी,
2: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है, और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना, ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान लें।
0: जी,
2: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की थी। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे, उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए, और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम, तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान

0: हालिया जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना, दर्शन भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन, मूर्त वास्तुकला मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन, प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी,
0: उसका अध्ययन करना, वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना, भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना, अमूर्त विरासत का संरक्षण करना जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति ये हासिल करना, और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम में सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है
1: जी। वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है, हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
2: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक और उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है, क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु हैं। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही है। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य सिनेमा साहित्य और खानपान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं और भारत की संस्कृति में करुणा अहिंसा सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बेहतर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
1: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों?
0: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं, लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर, भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से, सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए दुनिया भर में, पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, अनिल जी ने भी उल्लेख किया। भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया, जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आजकल। भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है, और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु, विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं, लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
1: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज गजलों के कार्यक्रम महफिल में हम आपको अलग अलग गायकों के कुछ गजल सुनवाएंगे। आज आपको हम सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह, कमाल खान, शंकर महादेवन, शाजी मंजूर, विभा शर्मा, जयश्री शिवम और उदित नारायण की आवाज़ों में चंद गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इन्हीं गज़लों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

0: कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले पेश कर रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये नगमा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। ये सच है कि मोहब्बत में एक दूसरे को लोग बोल नहीं पाते, मन ही मन बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी ना बोलना भी नुकसानदेह हो सकता है। चलिए हम एक बार प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं।
1: तुम

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। श्रोताओं, पति पत्नी में नोक झोंक होते ही रहते हैं और इसी में जीवन का असली आनंद आता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत साजन चले ससुराल से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। ऐसा लगता है जीवन में जब कोई तारीफ कर देता है तो मन खुशी से झूम उठता है ना। तो तारीफ अगर सही में हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन अगर झूठी तारीफ हो तो भी हम खुश हो जाते हैं, है ना। श्रोताओं, अब आपको हम अगला गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। जी हाँ, जो अपना साथी होता है उसमें रब दिखता है, अगर वो अच्छा हो और जीवन भर साथ अच्छी तरह से निभाए तो। आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का ये गीत, आर राठौर की आवाज़ है, सलीम सुलेमान के संगीत पर।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों की रंग छवि के साथ। श्रोताओं, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम करते करते थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, है ना। चलिए आपको सुनवाते हैं हेमा सरदेसाई और मलय साई वासुदेवन की आवाज़ में ये गीत फिल्म सपने से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, अभी इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और 2 अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50 लाख रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।